0: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
1: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
0: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
1: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
0: ये क्या होता?
1: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir.

0: is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: Welcome back. Swagat hai aap sabka. Welcome. Salaam alaikum. Sasriyakal. Kamo nacho. Kim cho. स्वागत है इस शो का. और दिल से दिल की बात दिल पर लगे ना तो लगती है ठाएं. तो एक और ठाएं बात है. आई थॉट मेरे दिल पे ठाएं लगी तो आपके दिल पर भी लगेगी ठाएं. तो क्या है किसी ने एक नफ़रत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है. एक नफ़रत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है. और एक मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है. सोच के देखिए व्हाट इज दिस. कितना भी कोई मोहब्बत कर ले, कितना भी जता ले, एक दिन में वो टूट जाता है. लेकिन किसी ने नफरत कर दिया तो हमेशा याद रह जाता है. वेट इट.
6: बदली सी हवा है

पैड्स ऑफ बॉलीवुड से लिया गया ये वाला गाना, बहुत ही फन सॉन्ग आई फील। एंड दोस्तों पता है पीएमजे ज्वेलर्स अब आ चुके हैं फ्रिस्को में, एंड दे हैव ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके स्टनिंग गोल्ड, डायमंड, ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Gattamaneni, PMJ is a name trusted by generations. Aap visit kariye PMJ Jewelers Frisco mein on Main Street and discover jewelry that tells you story. Har insaan ki ek kahani hoti hai. Ye to baat hai. Dosti se bhi shuru hoti hai.

0: दारू जैसी इज अ कनोटेशन दैट्स बिन गिवन टू इट, मीनिंग कि जैसे चढ़ती है धीरे धीरे वो नशा. नशा डेफिनेटली यू नो नेगेटिव वर्ड है, बट यहाँ पर नशा क्या मतलब, यही है समथिंग दैट फील गुड एंड रिलेशनशिप फील्स गुड, द फ्रेंडशिप फील्स गुड, एंड वो एब्सोल्युटली आपको एक डिफरेंट स्फीयर में लेके जाती है ज़िंदगी के, जहाँ पर नशा जैसा फील होता है. सो देयर यू गो, हैव ऑल योर फ्रेंडशिप विच इज़ लाइक द दारू देसी. सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो, और ये शाम बस आपके नाम है. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 972-235-5555, स्टूडियो का नंबर है, और आपके साथ खेलने की बारी आ चुकी है मेरी.
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
0: ओए जमूरे क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी. हिंदी के अलावा ओके, उर्दू इज़ अलाउड बट नॉट अलाउड इज़ अंग्रेज़ी. पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारे भाषाओं में, और फिर सोचती है कि वहीं की बिलोंग करती हैं. हम निकाल रहे हैं उन्हें चुन चुन के, चुन चुन के, चुन चुन के. चलिए लेते हैं अपने पहले कॉलर को. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, आपका स्वागत है. आई थिंक दैट वॉज अ ड्रॉप्ड कॉल, बट लेट्स प्ले द सॉन्ग राइट हियर राइट नाउ फॉर यू.

0: 250 years of independence, and that is what we are celebrating on 4th of July weekend. 250 is amazing, and the country is growing, and ye jo freedom hai na, hame saste mein nahi lena chahiye, because it means a lot when you can breathe and do what you feel like. कहीं पर किसी को अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहिए. एंड हूएवर इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स इन देयर कंट्रीज वेयर दे आर नॉट फीलिंग फ्री, आस्क देम व्हाट दैट रिस्ट्रिक्शन रियली मींस. हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रीडम है ना, इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज थिंग. चलिए गल हिंदी हिंदी बोल मैं मेरे अपने नेक्स्ट कॉलर को ऑन एयर लेती हूँ. गुड इवनिंग फाइव स्टार रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. हाय.
1: Hi.
0: How are you? क्या है आपका नाम हमारे listeners के लिए बता दीजिए.
1: मैं राम हूँ.
0: So sweet. इतने दुखी से क्यों बात कर रहे हैं राम जी?
1: नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ. मैं बहुत ध्यान से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ.
0: ध्यान से बात कर रहे हैं इसलिए आप ऐसे साउंड कर रहे हैं. बट आपकी ना फोन से आवाज ना थोड़ी बीच बीच में कट जा रही है, तो आप अगर स्पीकर फोन या ब्लूटूथ में है तो फिर उससे हट जाइए प्लीज.
1: जी.
0: ऑलराइट, बहुत ध्यान से बात करें, मुझे समझ आ रही है. तो आपका वक्त शुरू कर दिया जाए.
1: हाँ जी.
0: सो योर टाइम हैज स्टार्टेड राइट नाउ. तो आप जब इतने सीरियस हो जाते हैं तो ऐसे साउंड करते हैं, बड़े दुखी.
1: नहीं, दुखी कहाँ हूँ.
0: नहीं है ना, एकदम खुश है.
1: मैं बस सावधान हूँ.
0: सावधान है. अच्छा, सावधान. सो वेयर आर यू गोइंग राम जी?
1: नहीं, मैं बस एक दोस्त के यहाँ जा रहा था.
0: तो बस ही क्यों जा रहे थे? गाड़ी में जा रहे आप, तो बस में जा भी नहीं रहे.
1: बस मतलब कि बस यूं ही जा रहा था.
0: अच्छा, बस यूं ही जा रहे थे. तो ये क्या प्लान है आज का?
1: कुछ नहीं, बस बैठेंगे.
0: हाँ.
1: कुछ खाएंगे. बस बातें करेंगे.
0: मतलब
1: एक
0: कितना
1: दूसरे की बुराइयां करें.
0: आप हाँ, एक दूसरे की क्या करेंगे, बुराइयां?
1: हाँ, अच्छा. बड़ाई.
0: अच्छा, बड़ाई.
1: मतलब लोग करेंगे.
0: हाँ.
1: साथ में मेरी धर्म पत्नी भी है, तो
0: सब मिलके करेंगे.
1: सब मिलके करेंगे.
0: सो व्हाट्स द फूड टुनाइट?
1: क्या
0: खाना क्या है आज?
1: खाना तो वो सिंपल.
0: अरे यार, सिंपल है. आई एम सो सॉरी, इतना सिंपल था. बट फाइन, एंजॉय द सिंपल खाना. आई लव इट. नो वरीज. दुखी हो गए फोन. इतने दुखी, इतने स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्ट और कैरेक्टर में थे हमारे राम जी. तो होता है बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी. पता, आज मुझे ये गाना सुनने का मन हो रहा है. फॉर यू टू. बहुत समय हुआ, कहाँ है हमारे ऋतिक रोशन यार? ही नीड्स टू डू मोर मूवीज.

0: Super! Tandoori Frame, located in Garland, is the new flavor destination for all spice lovers. If you're a spice lover, they are serving up sizzling tandoori platters, rich curries, all your North Indian favorites with that home-style punch. From smoky tandoori kebabs to velvety curries and fresh hot naan. Bol kar hi muh mein pani aa raha hai. Every plate feels like a celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. Tandoori Flame Restaurant, located in Garland. Tandoori Flame. Chale lete hai apne next caller ka, jinka naam hai Mithun Sahab. Mithun Sahab, aapka swagat hai. Welcome on Funny Show Radio.
1: धन्यवाद आपका काफी धन्यवाद
0: काफी धन्यवाद शुक्रिया आपका काफी शुक्रिया मिथुन साहब आपका वक्त शुरू किया जाए
1: ठीक है
0: राइट योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ सो नाउ यू कांट टॉक इन इंग्लिश ओके
1: ठीक है
0: ऑल राइट तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं अभी
1: मैं तो घर पे हूँ
0: आप घर पे रेडियो सुन रहे हैं
1: हाँ
0: Very, very nice. So, 4th of July ke firecrackers dekhne ka koi plan nahi hai?
1: Raat ko jaunga, patake dekhne.
0: Kitne log jaoge aap log?
1: 4-5 jayenge.
0: Sare friends log, family aise?
1: Haan, kuch dost hai.
0: To plan kiya hai ki abhi socha bhi nahi hai, who all are going?
1: Abhi to jyada nahi socha, but kuch to aa jayenge.
0: ओके
1: नौ
0: बजे के आसपास राइट तो एक्चुअली तो फायरवर्क्स आज भी है कल भी है राइट
1: हाँ आज भी है तो आज भी जाऊंगा कल भी जाऊंगा
0: देखते हैं और 250 इयर्स है विच इज अ फन तो इस बार तो लग रहा है ज्यादा जोर से होने वाला है
1: हाँ 250 साल हो गए
0: सुपर तो फिर क्या और प्लान है आज का
1: मैं तो खाना बना रहा हूँ
0: खुद से क्या खाना बना रहे
1: मैं भात बना रहा हूँ दाल बना रहा हूँ फिर मछली बनाऊंगा फिर पापड़ बनाऊंगा
0: हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मतलब मेरे को दो चीजें इसमें पूरी बात में समझ आई एक आप क्या कैलकटा अराउंड कैलकटा एरिया से ईस्ट से
1: हाँ
0: है ना देखिए पकड़े गए एक तो भात बोला आपने चावल की जगह और मछली खाने वाले है दैट इज सुपर Love it. तो चलिए मिथुन जी आपको मैं भी कुछ दे दूं चलेगा
1: एकदम चलेगा
0: सो ऑसम सो यू विन अ $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50 एट मिराज लाउंज ये मिल रहा है आपको ऑसम कंग्रेचुलेशंस आपको और मैं नहीं परेशान कर रही हूँ आपकी मछली की याददाश्त जिसमें हिंदी ही बोलना था अंग्रेजी नहीं डालना था
1: वो हाँ, तो बिहार का हूँ मैं तो बिहार में रहा हूँ तो हाँ, हिंदी बोलना तो बचपन से ही आता है
0: अच्छा राइट आने से कुछ नहीं होता प्रॉब्लम है सबको आता है लेकिन ये बिचारी हिंदी में जैसे इंग्लिश के शब्द घुस गए हैं लोग आप अच्छा आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हो
1: मैं मम्मी पापा को माँ बोलता हूँ पापा को बाबा बोलता हूँ
0: नाइस देखिए आप बोलते हो लेकिन आधे से ज्यादा जनता मम्मी पापा बोलती है जो अंग्रेजी शब्द है
1: अभी क्या कर सकते हैं मैं हिंदी में तीनों काम कर सकता हूँ मैं अच्छी बातें भी बोल सकता हूँ गंदी बातें भी बोल सकता हूँ सारी बातें कर सकता हूँ हिंदी
0: में सारी बातें वेरी नाइस इसको बोलते हैं TMI टू मच इन्फॉर्मेशन बट थैंक यू सो मच मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ रियल इन्फॉर्मेशन और अपने लोगों को एक गाना सुनाने वाली हूँ बट बता दूँ अगर आपको फेवरेट हैंग आउट करना है और एक्सपीरियंस करना है तो मिराज लाउंज है जिसका मैंने आपको गिव अवे दिया है इंजॉय प्रीमियम हुक्का डिलिशियस बाइट्स हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स लाइव म्यूजिक एंड एक्साइटिंग डीजे नाइट्स ऑल अंडर वन रूफ एंड द बेस्ट पार्ट और एक अच्छी बात है हैप्पी आवर रन्स मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 11 AM टू 6 PM वहाँ पर हैप्पी आवर है आप हैप्पी आवर में जाइए तो आपको हैप्पी प्राइसेस भी मिलेंगे फीचरिंग हुक्का स्टार्टिंग एट जस्ट $24.99 एंड शॉट्स फॉर ओनली $4.99 ओके प्लस
1: क्या बात
0: हाँ प्लस डोंट मिस द फन विद लेडीज नाइट्स एंड कॉलेज नाइट्स वो भी आप विजिट कर सकते हैं मिराज लाउंज में मकीनी में है रैंच पार्क पे बिकॉज मिरेकल्स हैपन एट मिराज ऐसे ये कहते हैं और आपको मिल चुका है $20 ऑफ जब आप वहाँ पर जाके ये सब कुछ भी खा रहे पी रहे और आपके $50 बिल आ गया, तो उसमें $20 ऑफ द $30 में ही आपका $50 का काम हो जाएगा. गुड,
1: ठीक है. तो मुझे कुछ स्पेशल बोलना पड़ेगा उनको या
0: नहीं? तो मैं अभी आपका इन्फॉर्मेशन लूंगी ऑफ एयर और मैं बताती हूँ आपको.
1: ओके,
0: ठीक है,
1: ठीक.
0: डोंट गो एनीवेयर.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting, rerouting.
0: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
3: आई एम सो स्ट्रेस्ड क्रेडिट कार्ड बिल्स अनसिक्योर्ड डेट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू
4: कुछ भी नहीं उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस
3: क्या मतलब
4: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स
3: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
4: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी कॉल तो करो 888-888-9914
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
5: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
6: समझ नहीं आ रही टिकट लूं तो कहां से लूं
7: इट्स लॉसन
6: किससे बात करूं सारी जानकारी कौन देगा
7: इट्स लॉसन
6: Daddy, what is the law?
8: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
9: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas. Cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
13: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me. It's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
18: हाँ
17: घर रिलोकेट करनी है
18: हाँ
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
18: हाँ भाई हाँ
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
19: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
20: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
21: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
7: 94.9 FM Furniture Radio पर आपका बहुत बहुत स्वागत. मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन ये शो विच इज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.

पर आज तो वीकेंड का वाइब कल से ही शुरू हो गया है, बिकॉज आज की जो छुट्टी है वो तो एक्स्ट्रा बोनस है ना. लॉन्ग वीकेंड आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. इट इज़ जस्ट हैपनिंग गोइंग एंड वी आर लविंग इट. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए, सुनने के लिए मुझे ऑन दिस रेडियो शो. किसी ने कहा, कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते वक्त के साथ. कौन कहता है रिश्ते नहीं बदलते वक्त के साथ. बचपन में जो चंदा मामा हुआ करते थे, जवानी में वही महबूब हो जाते हैं. वाह वाह वाह वाह, चंदा मामा. एंड व्हेन यू आर यंग

रिस्वान इमरान हाशमी का ये वाला गाना अभी कुछ दिनों से सुन रहे हैं 104.9 FM। पता है जिलुना मुझे कहते हैं, किसी ने कहा मैं गया हुआ था एक खाने रेस्टोरेंट में, तो एक वेटर आया था और एक लेडी वहाँ बैठी थी, थोड़ी स्टाइल में बैठी थी फ़ोन लेकर। तो वेटर आया तो उसने कहता है, मैडम आप क्या लेंगी? तो उस मैडम ने कहा, पहले मैं 10-12 सेल्फी लूँगी, तुम 15 मिनट बाद आना। I was like shocked, so cute. But फिर ढिलुना मुझे ये भी कहते हैं, आपको पता है नवनीता, रुनाने वाले जिंदगी में बहुत मिलेंगे, हंसाने वाला बस एक मैं ही हूँ. Alright, alright, alright. सुन रहे 104.9 FM Fun Asia Radio. और इस रेडियो की खास बात यह है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, गाने, सब कुछ आता है. गेम शो भी जहाँ पर आप हिस्सा लेते हैं. पर ये बता दूँ कि ये पार्ट जो अभी आप सुन रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ माय शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. ये भी ज़रूरी है कि आप अपने पैसे संभाल के रखें जो कमा रहे हैं. दे ऑफर इनोवेटिव फिनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. सो दे आर देयर फॉर यू बिकॉज दे आर ट्रस्टेड, दे आर एफिशिएंट एंड दे गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. फोन उठाइए, नंबर दबाइए, कॉल कीजिए उन्हें 4699429888 पर, 4699429888, या फिर आप विजिट कर सकते हैं agfintax.com. बेस

0: ब्यूटिफुल 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं दोस्तों. आपको तो पता होगा, आप मेरा एड सुन रहे होंगे नवनीता खेमका विद केलर विलियम्स रियल्टी. यस दैट्स मी. एंड जस्ट फील सो गुड, सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, टू हेल्प यू विद द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ. वेदर यू आर बाइंग अ होम, सेलिंग अ होम, finding something for investment, buying a bigger luxurious home or downsizing, whatever your interest might be, your need might be, you need somebody who you can trust, who gives you all the information in a very transparent manner, and you also enjoy working through your property. Life should be full of fun, doing stuff, not with stress, but stress-free, from showing to the final closing, everything. And that is just one step away. और मैं हूँ आपकी वो रियल्टर. चलिए आपका घर मिलकर ढूंढे या आपको बेचना है तो मिलकर करें. That is the fun we can have together. Navneeta Khemka with Keller Williams Realty. याद रखिएगा मुझे. सुन रहे हैं ये शाम नथिंग बट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे शाम. सो यहाँ पर गाने बन रहे हैं, बहुत बज रहे हैं, अनेक बज रहे हैं, अच्छे बज रहे हैं, लेकिन दिल को जो दिल को छूने वाले जो गाने होते हैं ना, ये वाले विद सो मच ऑफ ट्रूथ इन इट. द हैप्पी फील, क्योंकि जिंदगी एक है, दो बार क्या सोचना.
1: ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

हम क्या तीसरी टोटल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आज जी लो जो जीना है, कल किसने देखा है। और ये सच्चाई, सच बताए तो सच्चा ही है, बिकॉज वी जस्ट रन अराउंड थिंग्स, जो हम सोचते हैं हमें मिलेगा तो खुशी आएगी, बट सच बोलो तो आज ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लो, अपने इर्द गिर्द दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। वो वक्त जब हम कोविड टाइम में घर में अटके पड़े थे और खेल रहे थे गेम्स, ताश, लूडो, बना रहे थे खाना, फैमिली के साथ थे, वर द हैप्पीएस्ट टाइम। हमें कोविड ने सिखा दिया, जीना इसी को कहते हैं यारो, हम भागते चले जा रहे हैं, वॉट इज़ देयर इन रनिंग। सो आज जी लो, 4th of July है, हैव फन, यू नो, कर लो जो करना है, आज ही है वो। वैसे बीच में कहीं झेलूराम टपक पड़ते हैं और मुझे कहते हैं कि पता है आज मैंने प्रार्थना किया ऊपर वाले से कि हे प्रभु मुझे 10-12-15 करोड़ देकर भी परख लो यार, परख लो मुझे। मैं बोली कैसे परखो 10 करोड़ देके, मैं भी तो जानूं कि पैसे आने के बाद मेरा असली रंग क्या होता। कहते ना रंग बदल जाता है लोगों का। तो आपका जो भी असली रंग कल होगा, आज जी लो फिर भी। सुपर सॉन्ग, क्यूट सॉन्ग, उल्लू ही बन के रहो तो अच्छा है।

such a cute cute song 104.9 FM funny joy radio sun rahe hai. Pata hai yaar jab hum bimar hote hai na to hum itne vulnerable hote hain itne you know we just want somebody to take care of us aur zindagi aisi bhagti chali ja rahi hai ki koi nahi hota jo hamara khayal rakhta hai aur hum depend karte hain sare primary care places pe hi aur wo bhi jab hame waqt nahi dete na तो बीमार होके भी ऐसा लगता है यार कोई नहीं है और उस समय इतने वल्नरेबल होते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे साथ यार कोई नहीं है पर इन डैलस वी हैव पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एंड व्हाट दे डू एवरी अपॉइंटमेंट में दे रियली स्पेंड टाइम विथ यू दे डोंट शव यू ऑफ इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स की हो गया बस ये टोंग टोंग टोंग एंड यू आर गॉन दे विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर 30 मिनट्स बिकॉज दे ट्रूली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन विथ योर हेल्थ And whatever time it takes, they want to give it to you. And that is Passion Health because they don't treat you as a patient but treat you as a family. So, pahunch jaiye is family ke paas for your health and they care for the health of the community. Passion Health, primary care. Aur abhi to aisa hai ki Passion Health is growing and they are hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. अगर आप हैं जो इस primary care के साथ जुड़ना चाहते हैं full-time या part-time opportunities के लिए तो ये मौका आपके लिए है. So you can send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com या फिर phone उठाइए number दबाइए text कीजिए 217-454-4639 और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आप टेक्स्ट करते हैं बैक एंड फोर्थ बात होती है या फिर विजिट पैशन हेल्थ केयर फिजिशियंस डॉट कॉम और कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 कहते हैं वो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर योर हेल्थ इज़ आवर पैशन दैट्स वाई दे आर फुल ऑफ पैशन

0: शो में ला रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए अगले दो.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है.
4: हाँ, देख लेंगे.
3: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
4: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
5: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस. PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलस न्यूएस्ट.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Ye tara wo tara har tara.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
15: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
16: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
17: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance.

0: हाँ, जुम्मे की शाम है। जुम्मे की बात तो बताने हमने की नहीं थी, बट कोई नहीं, चले जुम्मे की रात तो जरूर है और इसी बात पे पार्टी तो बनती है यार, क्यों नहीं बनती है। जुम्मे की रात है और July 4th का लॉन्ग वीकेंड है। इनफैक्ट पीपल ऑलरेडी स्टार्टेड लीविंग टाउन ऑन वेंसडे टू अवॉइड द फ्लाइट डिलेज एंड रोड क्लोजर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यस, एक्सेप्ट फॉर द हीट, बाकी सब तो उम्मीद करता हूँ आपकी जिंदगी में फर्स्ट क्लास तो होगा ही।
1: जो जब तक है तब तक है।

यहाँ मामा मामा शुका प्रीतम का म्यूजिक और कॉकटेल टू से लिया था हमने ये गाना आपके लिए ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे इवनिंग. बताइए, इनफैक्ट इन लिटिल बिट आई विल ओपन अप द फोन लाइंस. मैं आपकी रिक्वेस्ट लेना शुरू करने ही वाला हूँ. अभी तक मैंने फोन लाइंस ओपन नहीं की है, बट कोई नहीं. बताइए मुझे आपकी शाम कैसी गुजर रही है और बताइए आप इस शाम में क्या सुनना चाहते हो. उससे पहले मैं बताता हूँ कुछ जरूरी जानकारी आपके लिए. अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स को देख के आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कोई बात नहीं. आपको एक चीज़ याद रखनी है. आपको रखना है नाम माई टाइम इक्विटी याद. वेल, माई टाइम इक्विटी जो सुधीर पाई लीड करते हैं, ये इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बिल्ड करने में. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ आपकी मदद कर सकते हैं, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ला सकते हैं, और इनके पास कई सारी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी होती है. वेदर यू प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. जी हाँ, इनसे संपर्क कीजिए, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनसे कंसल्ट कीजिए और अपनी सिचुएशंस आप इनके साथ शेयर कीजिए एंड दे विल हैव सम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फॉर यू. विजिट माई टाइम इक्विटी और यू कैन .com और यू कैन कॉल देयर ऑफिस एट 4697021272. जी हाँ, 4697021272. चलिए लेके चलता हूँ आपको लेकर प्रभु का नाम.

हाँ, म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। आफ्टर ऑल लॉन्ग वीकेंड है, जुलाई 4th का वीकेंड है, पार्टीज तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट आई एम श्योर यू आर इधर एट अ पार्टी और ऑन योर वे टू अ पार्टी और प्लानिंग अ पार्टी दैट इज हैपनिंग दिस वीकेंड। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की। और उससे पहले बताता हूँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो मेक श्योर यू फोकस ऑन द ड्राइविंग। कई बार मुझे बताया गया है कि सौमिल आपका शो सुनते सुनते पता नहीं क्या हो जाता है, रफ्तार थोड़ी बढ़ जाती है। मेक श्योर यू कीप एन आई ऑन द स्पीड लिमिट एंड ड्राइव सेफली। एंड इफ यू एवर इन्वॉल्व इन एन अनफॉर्चुनेट कार और ट्रक एक्सीडेंट और यू इन्वॉल्व इन अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, जी हाँ, अटॉर्नी उमर ख्वाजा का नाम याद रखिए। दे विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू राइटफुली डिजर्व। इंश्योरेंस कंपनी से डील करने में ना, हमको जो आम लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है क्या क्या सही है क्या गलत है, बट अटॉर्नीज आर वेरी स्किल्ड एंड अटॉर्नी उमर ख्वाजा कैन रिप्रेजेंट यू एंड गेट यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू राइटफुली डिजर्व एंड यू डोंट पे देम अनटिल यू विन। जी हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई केस हो, अगर आप कंसल्ट करना हो इनको, मैं आपको इनका नंबर भी देता हूँ और वेबसाइट भी देता हूँ। जी हाँ, इनकी वेबसाइट है attorneyomar.com और अगर नंबर चाहिए, नंबर है 469-300-5046, 469-300-5046। चलिए रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है, और अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो, कुछ शेयर करना हो तो बताइए मुझे। और गिरसा की रिक्वेस्ट पे जा रहा है ये सॉन्ग उनके शौहर के लिए। हियर कम्स कॉकटेल ओरिजिनल वन।

जी हाँ, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही. वेल दैट इज अ मंत्र एंड दे पुट इट इन अ सॉन्ग. एंड हम वही सोचते थे यार स्कूल में, जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज याद करने होते थे और मैथ के फॉर्मूलेज याद करने होते थे, हम सोचते थे यार कोई गाना बना के अगर इसको समझा दे तो ये याद भी रह जाए, राइट? अदरवाइज द फॉर्मूलाज वेर टू कॉम्प्लेक्स. एनीवेज चलिए लेके चलता हूँ आपको पहले गिव अवे. आई हैव अ लॉट ऑफ गिव अवेज दिस इवनिंग. रहूंगा मैं आपके साथ 10 बजे तक. और गिव अवे, पहला गिव अवे आ रहा है आपके और फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. यू गेट अ चांस टू विन ड्राई चिली चिकन और चिली बेबी कॉर्न और डैलस बेस्ट बटर चिकन विच इज़ RHCP's चिकन मक्खन वाला. यू कैन पिक दिस अप फ्रॉम वन ऑफ द 3 लोकेशन, इधर रिचर्डसन, मैकिनी और एलन. यू कैन नॉट डू दिस एट द फ्रिस्को लोकेशन, बट यू कैन पिक दिस अप फ्रॉम वन ऑफ द 3 लोकेशन, रिचर्डसन, मैकिनी और एलन. और शर्त यही है कि बस आप सही जवाब दे मुझे और जो मैं बता रहा हूँ टिप, जो हिंट बता रहा हूँ, तो सही जवाब दे. और अगर आपने जीता ना हो ये गिव अवे इन द लास्ट 30 डेज, दे कीप ट्रैक ऑफ हु हैज़ वन, हु हैज़ नॉट वन. सो मेक श्योर यू हैव नॉट वन इन द लास्ट 30 डेज. अगर इफ़ यू हैव नॉट वन एंड इफ यू नो द आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ फेयर गेम. आई एम गोना पिक द सेकेंड कॉलर हु कॉल्स एंड आई वॉन्ट यू टू गिव मी द नेम ऑफ दिस मूवी जो मैं बजा रहा हूँ गाना. अगर आपके पास इसका नाम हो 9722355555 गिव्स यू चांस टू विन ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न और RHCP's चिकन मक्खन वाला. वन चांस फॉर यू टू विन वन ऑफ दीज 3 फॉर पिकअप लोकेशन फ्रॉम रिचर्डसन, मैकिनी और एलन.

जी हाँ, जीते जीते हमको जीना आ जाएगा और ना भी आया तो किसी का क्या जाएगा. वेल टेकन फ्रॉम द मूवी वॉर टू. थैंक यू फॉर प्लेइंग अलॉन्ग एंड दिस इज अ लेसर नोन सॉन्ग. ऑफकोर्स जनाब आली इज द मोर पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम दैट एंड ऑफकोर्स देर वॉज लॉट ऑफ अदर सॉन्ग्स बट आई लव द सॉन्ग बिकॉज इट picturized it set the story in motion when the two kids meet and they become each other's guardians guarding against the bullies that they are fighting and then that friendship blossoms into brotherhood almost. Jeete jeete humko jeena aa jayega taken from war 2. Jubin Nautiyal ki awaaz, Pritam ka music aur Amitabh Bhattacharya ke lyrics. Yash Raj films leke aaye the aapke liye war 2 with their another kisht of spivers. वेल स्पाइवर से याद आया, नई उनकी किस्त रिलीज हो चुकी है. इनफैक्ट दैट इज अल्फा. वेल बताते हैं उसके बारे में कुछ और इस गाने के बाद. चलिए लेके चलता हूँ आपको

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
6: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: बेटा, 95% आए?
14: हाँ मम्मी।
13: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
12: मेरा?
13: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
12: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
15: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
16: Welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen. This is your host, RJ Saumil, stepping in for RJ Swati, of course, trying to do level best to match her pace and to match her standard. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और वेलकम करता हूँ आपको ऑन द सेकंड सेगमेंट। रहूँगा आपके साथ में 10 बजे तक और सुनाऊंगा कुछ गाने ऑन दिस ब्यूटिफुल फ्राइडे इवनिंग। और बताइए आप क्या सुनना चाहते हो मेरे आका। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और पार्टीज की बात तो मैंने की थी, तो पार्टीज तो चलती रहेगी और पार्टीज में होते हैं थोड़े अडल्ट बेवरेजेस और म्यूजिक और डांस। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप भी नाचो जब तलक।

जी हाँ, मैं नाचू जब तलक तू बोले तब तलक. वेल दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट गिव अवे ऑफ दिस सेगमेंट व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. जी हाँ, बोला आपको एक सीधा सा सादा सवाल का जवाब देना है. एंड इफ यू क्रेविंग समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट, फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. जी हाँ, अगर आप वेजी लवर्स हो तो आपको मिलेगा अचारी पनीर पिज्ज़ा, और अगर आप मीट लवर हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा तंदूरी चिकन पिज्ज़ा, प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. सो वेदर यू लाइक समथिंग बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर योर फन पिज्ज़ा किचन. एंड विद दिस गिव अवे यू गेट अ चांस टू विन अ गिफ्ट कार्ड, $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन. बस शर्त सिर्फ इतनी है, वही शर्त है कि आपने पिछले 30 दिनों में ये जीता ना हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं. आपका क्वेश्चन ये है, जो मैंने गाना अभी बजाया इसमें जो तीन कैरेक्टर्स है, मैं नाचूं जब तक तू बोले तब तक, इनके फिल्म के नाम क्या थे? आई एम नॉट वांटिंग द ओरिजिनल नेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर नेम्स. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. इफ यू नो द कैरेक्टर नेम्स दैट दीज गाइज प्लेड, थ्री ऑफ देम, 9722355555. नित्या, हियर कम्स योर सॉन्ग, ए ब्यूटिफुल ट्रैक, उड़ी उड़ी, टेकन फ्रॉम अ प्राइवेट एल्बम. हियर इट कम्स.

0: जी हाँ, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी, टेकन फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस ऑफ कोर्स। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और बहुत सारे रिक्वेस्ट। इनफैक्ट मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी हैव अ शो दैट इज़ क्यूरेटेड एंड बेस्ड अराउंड अ थीम। तो व्हेन आई ओपन अप द रिक्वेस्ट लाइंस, कभी कभी होता है कि यार सम पर्सन रिक्वेस्ट अ सॉन्ग दैट इज़ वे आउट ऑफ द थीम and I may not be able to play that song because it will distract, it will take away from the theme and it will ruin the flow of the show. So I hope you understand that and isiliye main jab Saturday show karta hun Jile Zara, right, my signature show on Phanesia, when I do that signature show Jile Zara, I always tell that you can request a song as long as the song has the beat that can move our feet. So sometimes when I'm playing the new songs, jab main Laila aur Laila baja raha hun, to then if I get a request from Laila Majnu, then you know what, it may not be the right request, so I may not be able to play that song. So shama chahta hun uske liye aur bata deta hun ki yaar aapki request hum puri shiddat se hum puri karna chahte hain as long as it flows with the flow of the show. Chaliye leke chalta hun humko is gaane ki aur usse pehle batata hun main AG Fintechs ke bare mein. Well, this part of the show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firm in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as businesses. They are trusted, efficient, and they can really get you ready for the future. You can visit their website, which is agfintechs.com, or you can call their office, which is 469-942-9888. 469-942-9888. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और बताता हूँ मैं आपको यार जिंदगी में हम लोग कई बार सफर करते हैं, कभी इंग्लिश वाला सफ़र होता है तो कभी हिंदी वाला सफ़र होता है, बट एक जो वाहन में हम सफ़र करते हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेन्स बैक होम, ऑफकोर्स दोज जर्नीज आर रियली मेमोरेबल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बाइक्स एंड हु हैज़न्ट बीन ऑन अ बाइक एंड फेल्ट दैट एयर गो थ्रू एंड द रश इज रियल व्हेन यू आर ऑन अ बाइक। एंड कई बार बताया गया है कि यार समटाइम्स व्हेन मिड लाइफ क्राइसिस हैपन सम पीपल हिट द बॉटल, मेरा जो है आई टर्न द थ्रॉटल। आई लव राइडिंग, आई लव बाइक्स एंड लास्ट 5 months व्हेन आई वाज इन एलए आई वाज मिसिंग माय बाइक, आई ऑलमोस्ट बॉट अ बाइक व्हेन आई वाज इन एलए एंड शुक्र किया मैंने, चलो बाइक नहीं ली वहाँ पे, बट बाइक की बात ही कुछ अलग होती है। बाइक का जिक्र क्यों कर रहे हो सामिल? वेल, बाइक का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं कि यार हर जवान लड़का, और नॉट जस्ट लड़का, लड़कियों को में भी होती होगी बट लड़कों में खास होती थी यार बाइक चाहिए, और हियर इट कम्स।
1: ओ, मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मंग लेना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

தீட்டாக தின்னதா.

0: जी हाँ सर सर सर सर सर सर सर जी हाँ, ये उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाज़ में लिया था हमने गाना आपके लिए, टेकन फ्रॉम द मूवी गदर 2। जी हाँ सर सर सर, इसीलिए बोला क्योंकि आपको पता ही होगा इनकी मिमिक्री बहुत होती है, और उदित नारायण सच अ क्यूट सिंगर, व्हाट अ जेंटलमैन ही इज। वन टाइम आई हैड अ चांस टू होस्ट अ इवेंट विद उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार सानू, एंड व्हाट अ ट्रू जेंटलमैन उदित नारायण इज। एंड चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। इस गाने में आपने देखा था कि यार सनी देओल के सन उनसे पूछ रहे थे, पापा मोटरसाइकिल दिला दो। पता नहीं यार, कभी कोई मोटरसाइकिल पूछता है, कभी कोई घर दिलाने की बात करता है। तो घर दिलाने से मुझे याद आया, मैं आपको ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में बताता हूँ। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विथ ड्रीम होम मॉर्गेज। जी हाँ, ये 1998 से बिजनेस में है और ये सब फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स फॉर लोन्स। देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर टू योर नीड्स, वेदर यूर बाइंग योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग, रीफाइनेंसिंग, स्केलिंग डाउन और इन्वेस्टिंग। रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, स्टार्टिंग होम ownership journey with confidence today. Well, you can call them at 972-245-5626. जी हाँ, इनका नंबर है 972-245-5626, और you can visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. फिर ये ना कहना कि यार दिला दे घर,
1: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

और यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, हीट डोम हो पड़ा है यहाँ पे फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में, तो कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं हीट डोम की वजह से यूरोप में लास्ट लास्ट वीक का। देर वॉज सो मेनी फैटलिटीज बिकॉज ऑफ द हीट डोम। तेरे प्यार में भीगे, भीगने का मौसम आएगा, हमारे पास भी आएगा। वल भीगने से पहले मैं बताता हूँ आपको, यर इज़ अ चांस टू विन अ गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ। जी हाँ, ये फोर्ट वर्थ लोकेशन का गिव अवे है, सो मेक श्योर यू आर इन द रनिंग टू मेक श्योर यू गो टू फोर्ट वर्थ टू पिकअप दिस गिव अवे। क्या गिव अवे क्या है? वेल, हियर्स अ चांस टू विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थ लोकेशन पे ही लागू होता है ये गिव अवे। योर वन शॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर देसी एसेंशियल्स। इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ इज लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ। फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट एंड हैसलेट, दिस इज एब्सोल्युटली अ नो ब्रेनर चॉइस। चलिए बताता हूँ मैं आपको ये कैसे जीत सकते हैं आप इनका गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम फोर्ट वर्थ लोकेशन ऑफ इंडिया बाजार। मैं गाना बजाने वाला हूँ, ये बहुत ही हिट गाना है, और इस गाने में जो तीन किरदार थे उन किरदार के नाम आपको बताने हैं, फुल नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम नहीं, फुल नेम, जितनी ज़्यादा जानकारी हो उतना बताइए मुझे। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। गाना आ रहा है और हियर्स अ चांस टू विन अ गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।

जी हाँ, इनको तो मिल गया और हमको भी मिल गया विनर। राहुल खन्ना, टीना मल्होत्रा और अंजलि खन्ना पे फिल्माया गया था। इनके ये कैरेक्टर रोल्स थे, ये कैरेक्टर नेम्स थे ऑफ द थ्री कैरेक्टर्स, राहुल रॉय, राहुल नॉट राहुल रॉय, राहुल खन्ना, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी एंड काजोल। ये तीनों नाम थे इनके। काजोल का नाम था अंजलि खन्ना और टीना मल्होत्रा वॉज रानी मुखर्जी एंड राहुल खन्ना इज शाहरुख खान्स कैरेक्टर। वेल कंग्रेचुलेशंस कृषभ ऑन विनिंग दैट गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। एंड चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और अभी क्या बताऊँ यार, सिंग इज किंग का जमाना है एंड एब्सोल्यूटली लव दिस सॉन्ग, लव लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी, सच अ हिट मूवी। एंड इसका पार्ट टू आया था दैट बॉम्ब्ड लाइक अनबिलीवेबल। बट यू नो, जैसे कहा जाता है कि यार समथिंग शुड बी लेफ्ट अनटच्ड, इससे इसको फिर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। थ्री इडियट्स वॉज वन सच मूवी, देर इज टॉक अबाउट थ्री इडियट्स पार्ट टू एंड आई एम लाइक यार थ्री इडियट्स इतनी आइकॉनिक फिल्म थी एंड कल्ट लाइक फॉलोइंग है उस मूवी की एंड आई एम जस्ट स्केयर्ड दैट इट विल रूइन द लेगेसी ऑफ थ्री इडियट्स। बट चलिए कोई नहीं, सिंग इज किंग कमिंग योर वे।

जी हाँ, दैट वॉज टेकन फ्रॉम सिंग इज किंग. जैसे मैंने बताया, बहुत ही क्लासिक मूवी थी और इसका जो पार्ट टू आया था सिंग इज ब्लिंग, आई थिंक इट वॉज अ पैरडी मूवी एंड बनाने के लिए बना दिया उन्होंने, बट डिडंट डू जस्टिस टू द लेगेसी ऑफ सिंग इज किंग. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और सुनाता हूँ सेम टोन टेम्पो.

जी हाँ, मुंडिया तो बचकर ही टेकन फ्रॉम बागी टू, एंड क्या जोड़ी थी टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी की इस मूवी में. वेल फिल्म अगेन, बागी वॉज गुड, बागी टू, बागी थ्री, बागी फोर वॉज अ स्ट्रेच इफ यू आस्क मी. चलिए कोई नहीं, लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और बताता हूँ मैं. वेल पे अटेंशन ऑल देसी बॉयज एंड देसी गर्ल, विशाल शेखर कमिंग योर वे. डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू गो लाइव एंड इट्स गोना गेट टोटली लिट. विशाल शेखर द डुओ बिहाइंड द बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स लाइक देसी गर्ल आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस. ये होने वाला है अगले वीकेंड संडे को, जुलाई 12th एट कर्टिस कलवल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स आर अवेलेबल एट कैश पटेल प्रोडक्शंस, जी हाँ, KASH कैश पटेल प्रोडक्शंस .com. और व्हेन यू ट्यून इन टू फनेशिया यू गेट वेल लाइक टू से loyalty has its rewards. So thank you for tuning into Phanesia. When you use the code Phanesia on Cash Patel Productions, you get a 30% discount on July 12th at Curtis Colville Center Garland for the Vishal Shekhar tour, the super hit tour coming to Dallas. Ji haan, calling all Desi boys and Desi girls, of course.

जी हाँ, ये तो आने जाने की बात कर रहे हैं स्लो मोशन में। और चलिए लेके चलता हूँ आपको एक अलग से गाने की ओर। द सॉन्ग गोइंग आउट टू सुनीति जी, आई नो यू लव द सॉन्ग, आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग, टेकन फ्रॉम 3-2। आएगी आएगी भाई, आएगी, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी।

जी हाँ, कटी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं, वल खेतों से मुझे याद आया, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट बैक इन द डे जब हम लोग कॉलेज में थे और न्यू ईयर्स होता था. सो देर वॉज नॉट अ होल लॉट ऑफ डिस्कोटेक्स एंड क्लब्स एंड स्टफ एट दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s. जी हाँ, एजिंग माई सेल्फ, बट कोई नहीं, चलो कोई नहीं. बट वी यूज टू गो टू फार्म हाउस, हमारे दोस्त के फार्म हाउसेज थे, एंड सो वी यूज टू पिकअप द फूड एंड गो टू द फार्म हाउसेज. एंड कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ब्यूटिफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम 3-2, एंड दैट सॉन्ग वॉज स्पेशली फॉर सुनीति जी. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और चलते चलते आखिरी दो गाने सुनाते चलता हूँ मैं आपको.

पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लावर समझा गया? फ्लावर नहीं रही। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऊ बोलेगा ऊ, मैं ऊ नहीं बोलूंगा, मैं ऊ नहीं बोलूंगा, मैं बस यही बोलूंगा कि चलता हूँ कुछ ही लम्हों में। आखिरी दो गाने सुनाते चलता हूँ मैं आपको, और फिर से मिलूंगा मैं आपको कल शाम ऑन झीले सरा। इन द मीन टाइम

जी हाँ, लेट द म्यूजिक प्ले एंड लेट्स होप इट रेन्स टू. ऑफ कोर्स इतनी गर्मी हो रही है. चलिए चलते चलते आखिरी दुकान सुनाता चलता हूँ मैं आपको. द सेम टोन टी टोन एंड टेम्पो कमिंग योर वे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुककीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
5: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread, and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
4: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
10: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
2: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
3: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We are growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारी

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है देवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हमरा सता कश्ती तेरी

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

0: favorite music on your favorite radio.
1: Ekis.

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी.
2: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
4: मेरा?
2: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Your radio.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: अखियां सोनी तेरी मेरे वल हुण तक दी नहीं।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
2: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती। I'm sorry.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Ye set sirf shaadi ke liye theek hai. Ye wala bahut heavy hai. Aur ye kab pehna tha last time?
9: To pehenti kyun nahi ho?
8: Kaise pehnu? Ya to heavy ya fir special occasion type.
9: तो रोज वाला ले लो.
10: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
11: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
12: आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
12: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
15: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
16: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
17: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
16: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
17: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
18: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
12: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
19: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
12: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
20: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.
1: क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया.

0: tracks that put you on the right track.
1: पंडित जी दूल्हा है दुल्हन है हम हवन लगवा के फेरे ले लें
2: अरे मैं पंडित दिखता हूँ हूँ नहीं मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: तन्नी, आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 times I love you बोलेगा। By God, I'm looking red hot.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
3: हाँ, देख लेंगे।
2: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
3: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
4: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections, now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
5: ये तेरा घर, ये मेरा घर.
6: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
7: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
6: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
8: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
15: बेटा, 95% आए?
16: हाँ मम्मी.
15: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
17: मेरा?
15: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
17: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
19: Wait, itna sab aur price?
8: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
20: Main heroin hu.
21: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
22: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
21: Par और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
21: सच में सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर. मैं मधुलेखा आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत. वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक, 10 बजे तक आई एम कवरिंग इन फॉर संगीता एंड देन 10 टू 12 माई रेगुलर जस्ट चिल शो. लेकिन क्योंकि ये 3 घंटे का हमें टाइम मिल गया है और आज है 4th of July, तो सोचा कि आज हम 4th of July सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ. सो हैप्पी 4th of July टू ऑल आवर अमेजिंग लिसनर्स. टुडे वी सेलिब्रेट फ्रीडम, यूनिटी एंड द स्पिरिट दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. वेल, वेदर यू आर एंजॉयिंग अ बैकयार्ड बारबेक्यू, वॉचिंग फायरवर्क्स विद फैमिली, ट्रैवलिंग और जस्ट सिंपली रिलैक्सिंग एट होम, वी होप योर डे इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. Thank you for making us part of your day and for keeping us company all year long. Wishing you a safe, joyful and sparkling Independence Day. Happy 4th of July from all of us at Fun Asia.

Hey, this is Madhulika, लेकर आई हूँ जस्ट चिल. और आज जस्ट चिल के ट्रैवल सेगमेंट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 4th of July. सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दो तीन बड़े शहरों की बातें की जाएं जो कि रिलेटेड हैं इस इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए, राइट? तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी बॉस्टन की. यू नो, बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफिशियली बिगैन, कॉलोनिस्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेस बाय डंपिंग 342 chests of tea into Boston Harbor during the famous Boston Tea Party. तो भैया वैसे तो टी पार्टी होती है कि शायद शादी का ख्याल आया है, बट ये ख्याल इंडिपेंडेंस का आया था बॉस्टन में, एंड ये बॉस्टन टी पार्टी जो है इसी बात से फेमस हुई थी.

ये गाना लिया गया था सौतन मूवी से, एंड यस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 4th of July विद ऑल ऑफ यू. लेकिन अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं आपको उमर ख्वाजा के बारे में बताना चाहूंगी. जी हाँ अटर्नी, उमर ख्वाजा आपके बहुत काम आ सकते हैं, स्पेशली अगर कहीं आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में. देन अटर्नी उमर ख्वाजा को रखें याद, एज ही कैन फाइट योर केस, इंश्योरेंस कंपनी से भी डील करेंगे एंड आई विल गेट यू द कॉम्पनसेशन विच यू ट्रूली डिजर्व. साथ ही साथ यू डू नॉट पे अंटिल यू विन, तो जब तक आपका केस आप जीत नहीं जाएंगे आपको कुछ भी पे नहीं करना है. एंड फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप अटर्नी उमर ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार डॉट कॉम. दैट्स अटर्नी ओमार डॉट कॉम.

ऑलराइट, वेल दैट वाज मैं परवाना एंड एक गिव अवे आ गया है आपके लिए. जी हाँ, हियर्स योर चांस टू विन $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ओनली डाइन इन. जी हाँ, साथ ही साथ आप इंजॉय करें द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. राइट, सो आपको और बताऊं कि ये गिव अवे जो है इज फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. एंड साथ ही साथ ये जरूर याद रखें दैट यू शुड नॉट हैव वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द लास्ट 1 month, बिकॉज वी बिलीव कि सबको मौका मिलना चाहिए. राइट, सो यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर. सो अगर आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं किसी और शो में फन एशिया के, देन लेट अदर्स पार्टिसिपेट. अब क्वेश्चन ये है कि ये चंडीगढ़ बाइट्स गिव अवे है, आपको $10 ऑफ मिलेंगे ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ओनली डाइन इन. एंड क्योंकि आज हम अभी बॉस्टन टी पार्टी की बात कर रहे थे, तो चाय से रिलेटेड कोई भी दो गाने आप मुझे कॉल करके बताएं जो कि बॉलीवुड मूवीज में आए हों. एनी टू बॉलीवुड सॉन्ग्स रिलेटेड टू टी, बिकॉज हम बॉस्टन टी पार्टी की बात कर रहे थे. द स्टूडियो नंबर 972-235-5555 एंड यू कैन विन $10 ऑफ ऑन $50 डाइन इन. जी हाँ, एंड द नेक्स्ट वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया.

0: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
1: तो पहनती क्यों नहीं हो?
0: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
1: तो रोज वाला ले लो।
2: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
3: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में दोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
5: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
6: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
15: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
16: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

taken from the movie Har Dil Jo Pyar Karega. Well, एक गाना था ना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा. Well, ये मूवी का नाम था हर दिल जो प्यार करेगा. लेकिन डैलस आपको हो जाना है रेडी. अगर अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो भाई जल्दी से ले डालें. जी हाँ, बिकॉज विशाल एंड शेखर आ रहे हैं लाइव अपना शो लेकर. जी हाँ, योर प्ले लिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव. विशाल एंड शेखर, द जियो बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस ऑन नेक्स्ट संडे जुलाई 12th. ये होगा कर्टिस कर्बल सेंटर गार्लिन में. टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट cashpatelproductions.com. दैट्स कैश विद अ के. एंड डेफिनेटली यूज कोड फाइनेशिया एंड यू गेट 30% डिस्काउंट. सो रिमेंबर टू यूज द कोड फाइनेशिया टू गेट 30% डिस्काउंट. दिस इज गोना बी 12th ऑफ जुलाई एट कर्टिस कर्बल सेंटर इन गार्लिन. टिकट्स आर वेरी मच ऑन सेल.

Well, that was taken from the movie Fighter. And yes, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे. जी हाँ, वी आर सेलिब्रेटिंग 4th of July. और आज मैं बातें करूंगी आपके साथ बॉस्टन की, इनफैक्ट वॉशिंगटन डीसी की भी, न्यूयॉर्क की. सो सुनते रहें एंड गाने भी इंजॉय करें. बहुत अच्छे अच्छे गाने लाइंड अप हैं. एंड यस, आपको मैं बताऊं, अगर बॉस्टन की बात करूं तो इट्स वाज फाउंडेड इन 1630, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स. पता है, बहुत सी स्ट्रीट्स हैं, दे आर सो ओल्ड दैट दे वर्न्ट इवन डिज़ाइन फॉर कार्स, दे फॉलो ओल्ड काउ पाथ्स. आपको पता है कि यही एक ये एक शहर है, दिस इज़ अ सिटी दैट हेल्प स्पार्क द अमेरिकन रेवोल्यूशन. जो फेमस बॉस्टन टी पार्टी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, टुक प्लेस हेयर इन 1773, जब कॉलोनिस्ट डम्प्ड ओवर 340 चेस्ट ऑफ टी इन टू द हार्बर इन प्रोटेस्ट ऑफ ब्रिटिश टैक्सेस. बहुत सी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ बॉस्टन में, यू नो. सो इट्स होम टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टूडेंट हब्स एज वेल.

taken from the movie Dangal. That was Gilheriya. And this part of our show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US. ये ऑफर करते हैं आपके लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. सो इफ यू हैव एनी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, एनी गाइडेंस दैट यू नीड टू कॉल देम. द नंबर इज 469-942-9888 और विजिट agfintax.com. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय AG Fintax.

Well, that was taken from the movie Partner. And yes, आपकी medical health, आपकी खुशहाली, आपकी अच्छी सेहत के लिए partner करते हैं आपके साथ Texas Primary Care. जी हाँ, 13 साल से Texas Primary Care Clinic जो है has proudly cared for our community. और अब ये एक नए नाम से Frisco location में खुली है, and that's Lenoxy Medical. जी हाँ, founded by Dr. Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services all under one roof. तो आप इनमें से कुछ भी या सब कुछ एक ही छत के नीचे पा सकते हैं. एंड सबसे अच्छी बात, सातों दिन ये खुले हैं. जी हाँ, दे आर ओपन 7 days a week from 8 AM to 8 PM एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड व्हाट्सोएवर. सो रिमेंबर दैट, दैट्स Lenoxy Medical. दे हैव अ न्यू सेकेंड Frisco लोकेशन.

वेल होता है ना कि कभी कभी आपका कुछ एक सपना होता है और कहीं अटक रहा होता है, तो अगर सपना आपका एक ड्रीम होम है तो भाई मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किन्हें कांटेक्ट करें जिससे कि आपका ये सपना जो है रियलिटी में बदल जाए, राइट? सो यू कैन गेट योर ड्रीम होम, मे बी यू नो योर ड्रीम होम कैन बी वेरी क्लोज देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज हैज़ हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मोर्गेज सोल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। इनकी एक्सपीरियंस टीम है जो कि कमिटेड है टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स। तो जिस तरह की आपकी जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से वो लोन ऑप्शंस आपके लिए टेलर करेंगे। वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम और अपग्रेडिंग और जस्ट रीफाइनेंसिंग, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे। आप ड्रीम होम मोर्गेज को कॉल करें, द नंबर इज 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स। ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम्स कम यू नो मेकिंग ड्रीम्स होम्स हैपन। जी हाँ, आपका सपना जो है वो साकार हो सकता है।

अच्छा, अगर आपको कोई फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, राइट, माय टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाई ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, तो आप विजिट कर सकते हैं mytimeequity.com और यू कैन कॉल 4697021272, राइट? सो रिमेंबर द नंबर इज 4697021272 और विजिट mytimeequity.com.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
14: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
12: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
15: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फन एशिया 104.9 FM।

जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में ही बतलाऊंगी, पॉइंट पर ही आऊंगी सीधे। अब क्योंकि आज हम इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ, 4th of July सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि आज आपको मैं बॉस्टन, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स बताऊं रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। तो आपको बताऊं दैट, पता है, वॉशिंगटन DC वॉज नॉट अमेरिकाज फर्स्ट कैपिटल। बिफोर DC, सिटीज जैसे कि फिलाडेल्फिया एंड न्यूयॉर्क सर्व्ड एज अ नेशंस कैपिटल। एक और इंटरेस्टिंग या जानने वाली बात ये है दैट एवरी इंडिपेंडेंस डे, यानी कि एवरी 4th of July, थाउजेंड्स गैदर ऑन द नेशनल मॉल फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फायरवर्क्स डिस्प्ले। सो बहुत ही खूबसूरत सा ये फायरवर्क्स डिस्प्ले होता है इन DC, एंड इट्स, अगर आप इन डेट्स के अराउंड वहाँ हैं, देन डेफिनेटली डू नॉट मिस इट।

Well, that was Badri Ki Dulhania ka title track. And the next one, well, usko play karun, uske pehle main aapko agar Boston ki baat karun, to jahan, you know, revolution jo tha, wo start hua tha. So, before the revolution officially began, jaisa ki maine aapko bataya, colonists protested British taxes by dumping 342 chests of tea into Boston Harbor during the famous Boston Tea Party. पता है बॉस्टन की एक फ्रीडम ट्रेल है इट्स अ 2.5 माइल रेड ब्रिक पाथ कनेक्टिंग 16 हिस्टोरिक साइट्स फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन तो अगर आप बॉस्टन जाएं घूमने तो ये आप पाथ इस ट्रेल पर आप जा सकते हैं देख सकते हैं एज इट कनेक्ट्स 16 हिस्टोरिक साइट्स फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन

Well, that was taken from the movie मैं हूँ ना, and yes, मैं हूँ ना आपके साथ दोपहर के 12 बजे तक. जी हाँ, this is मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, आपको बताना चाहूँगी that विशाल एंड शेखर आ रहे हैं आपके लिए. They are bringing their super hit tour to Dallas. This is going to be next Sunday, July 12th at the Curtis Kerwell Center in Garland. Tickets are very much on sale at cashpatelproductions.com. That's cash with a K. Definitely use Funasia code to get a 30% discount. जी हाँ, so remember that. And साथ ही साथ आपके लिए एक गिव अवे भी है. जो गिव अवे ये है कि आपको मुझे कॉल करके बताना है दैट व्हाट डज इंडिपेंडेंस रियली मीन टू यू. सो आपको मिलेंगे दो टिकट्स फॉर दिस कॉन्सर्ट किसी भी एक विनर को, जो मुझे बताएगा दैट व्हाट डज इंडिपेंडेंस रियली मीन टू यू. सो द स्टूडियो नंबर 972-235-5555.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: दिस 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेट विद अ फीस्ट एट फन पिज़्ज़ा किचन। एंजॉय द फ्रीडम फीस्ट फॉर जस्ट $30.99 और गो बिगर विद द लिबर्टी फीस्ट फॉर ओनली $35.99। अ मीडियम सिग्नेचर पिज़्ज़ा, लार्ज चीज़ ब्रेड एंड योर choice of cheesecake or tiramisu and your choice of large fries or five rings. Dine in only.
3: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
5: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
8: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, where every bite is a celebration.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Hey Dallas! Still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah! It's time to level up! If you got talent, we got you! Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you! Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas! Because the next viral Desi star could be literally you! For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
12: Don't touch that dial. Keep listening.

are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, just chill. Well, आज हमारे ट्रैवल सेगमेंट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 4th of July, इंडिपेंडेंस डे, एंड इसी बात पर हम बातें कर रहे हैं बॉस्टन की, हम बातें कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी की, हम बातें करेंगे न्यूयॉर्क की. तो कमिंग बैक टू, अगर बॉस्टन आप जाएं तो डेफिनेटली उनका फेमस डक टूर जो है वो ज़रूर करिएगा. यू नो, ये बहुत ही अनोखा सा एक टूर होता है. इट्स बेसिकली, इट यूजेज़ अ रियल एम्फीबियस व्हीकल, यानी कि वही गाड़ी रोड पर भी चलती है, एंड देन इट्स स्प्लैश स्ट्रेट इन टू द रिवर, एंड इट्स बोथ अ सिटी टूर एंड अ बोट राइड. तो मतलब एक ही गाड़ी में आपको बोट एंड बस टूर जो है, या यू नो वैन टूर कह लें, वो आपको इंजॉय करने को मिलता है. साथ ही साथ आपको पूरी बॉस्टन की हिस्ट्री पता चलती है. दे टेक यू अराउंड बॉस्टन एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल एंड सो वेल दैट आपको थोड़ी देर में ही लगता है कि अरे मतलब समझ में आ गया कि यहाँ क्या हुआ था, या क्या ये मॉन्यूमेंट हम देख रहे हैं, क्या हिस्ट्री है. वी ऑल गेट टू नो डूइंग दैट duck tour. So I highly recommend that when you go to Boston, make sure you do the duck tour.

अगला गाना प्ले करूं उसके पहले ना मैं आपको बताना चाहूंगी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में. बिकॉज अक्सर होता है कि जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या आपके साथ 5 मिनट 10 मिनट बिताते हैं. एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हर एक अपॉइंटमेंट जो है इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स. बिकॉज ये सच है कि टू ट्रूली अंडरस्टैंड योर हेल्थ इट टेक्स टाइम, राइट? सो एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर लाइक फैमिली. सो फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को रखें याद. एंड दैट्स नॉट ऑल, पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग. सो यू नो दे आर हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकैट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. सो अगर आप पैशनेट हैं अबाउट पेशेंट केयर देन डू सेंड योर रिज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और यू कैन टेक्स्ट देम. द नंबर इज 217-454-46 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. या फिर आप विजिट करें पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम और कॉल 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन.

Well, that was taken from the movie कल हो ना हो, एंड आज तो हो गया है ना, तो क्यों ना आपको बताऊं कि आप Page 3 Eatery जाएं, बिकॉज वहां पे आपको देसी खाना, इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा मॉडर्न फ्लेयर के साथ. चाहे कबाब खाने हो, चाट, फ्यूजन बाइट्स या मॉकटेल्स, वाइब्रेंट वाइब्स हैं यहाँ. एंड यू कैन गो देयर फॉर ब्रंच, लंच, चाय, कॉफी, डिनर. इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, फॉर डेज एंड फॉर फ्लेवर चेजर्स. सो विजिट Page 3 Eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स. दैट्स Page 3 Eatery.com.

वेल दैट वॉज मस्ती की पाठशाला. और कभी कभी क्या है कि गलती से मिस्टेक हो जाती है, कंट्रोल लूज हो जाता है एंड यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट या फिर कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. तो आपको रखना है अटर्नी ओमर ख्वाजा को याद, एज ही विल फाइट योर केस, ही विल डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज, ही विल गेट यू द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड साथ ही साथ आप उन्हें पे नहीं करते टिल यू एक्चुअली विन द केस. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमार.com. दैट्स अटर्नी ओमार.com.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
8: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
14: इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं.
16: जा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
20: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो.
16: आजा मेरी गाड़ी.

you are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika, lekar aayi hu Just Chill. दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. वेल टुडे 4th ऑफ जुलाई रिमाइंड्स अस दैट फ्रीडम, होप एंड अपॉर्चुनिटी आर वर्थ सेलिब्रेटिंग. थैंक यू फॉर मेकिंग फन एशिया पार्ट ऑफ योर हॉलिडे. हाउएवर यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, किसी भी तरह से आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी होप इट्स फिल्ड विद हैप्पीनेस, लाफ्टर एंड प्लेंटी ऑफ म्यूजिक. हैप्पी 4th ऑफ जुलाई फ्रॉम एवरीवन एट Fun Asia.

0: उठा माजा किंग, ओ माजे किंग।
1: ऑलराइट, दैट वाज शेकी शेकी। अच्छा, हम क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक गिव अवे आया है आपके लिए और उसका क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंस डे से ही कुछ रिलेटेड है। सो गिव अवे तो है फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से, जहां पर आप जा सकते हैं इफ़ यू आर क्रेविंग समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट। होता है ना कि खाना है पिज़्ज़ा लेकिन थोड़ा देसी ट्विस्ट हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो वेल, दिस 4th of July वीकेंड सेलिब्रेट विद अ फीस्ट एट फन पिज़्ज़ा किचन। आप इंजॉय करेंगे द फ्रीडम फीस्ट फॉर जस्ट $30.99 और यू कैन गो बिगर विद द लिबर्टी फीस्ट फॉर ओनली $35.99 विच विल इंक्लूड अ मीडियम सिग्नेचर पिज्जा, लार्ज चीज ब्रेड एंड योर चॉइस ऑफ चीज केक और तिरामिसू एंड योर चॉइस ऑफ लार्ज फ्राइज और 5 wings। डाइन इन ओनली फॉर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com। और अब है आपके लिए एक सवाल। सवाल ये है कि जो हमारा यहाँ अमेरिकन फ्लैग है, इट हैज़ 50 stars, राइट? 50 stars, 1 for each state। साथ ही साथ इट हैज़ 13 stripes। व्हाट डज दोज 13 stripes रिप्रेजेंट? सो गिव मी अ कॉल, द नंबर इज 972-235-5555 एंड टेल मी व्हाट डू दोज 13 stripes ऑन द अमेरिकन फ्लैग रिप्रेजेंट एंड यू विल विन। क्या मिलेगा आपको? यू विल विन अ लार्ज पिज्जा एनी फ्लेवर फ्रॉम द मेन्यू। सो गिव मी अ कॉल, द नंबर इज 972-235-5555।

Well, that was taken from the movie 83. And yes, चलिए एक और फन फैक्ट करती हूँ आपके साथ शेयर. आपको पता है कि अमेरिकन्स कंज्यूम अराउंड 150 मिलियन हॉट डॉग्स ऑन द 4th of July एवरी ईयर. जी हाँ, सोचिए कि इतने सारे हॉट डॉग्स की आज होती है सेल.

0: हर तारा। अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
2: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
3: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: जीनी हुकम मेरी आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
8: मिराज लाउंज, चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
8: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
7: और एंटरटेनमेंट,
8: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
8: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
9: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

The movie वीर ज़ारा, that was ऐसा देश है मेरा. एंड जैसा कि अभी हमने पहले तो बात की बॉस्टन की, डीसी की, न्यूयॉर्क की भी, चलिए आपसे बात करती हूँ रिलेटेड टू 4th of July, इंडिपेंडेंस. तो आपको बताऊँ दैट यू नो द वर्ल्ड फेमस मेसीज 4th of July फायर वर्क जो हैं, दे लाइट अप द न्यूयॉर्क स्काई लाइन एवरी इंडिपेंडेंस डे एंड इज़ वॉच्ड बाई मिलियंस अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स. तो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये फायर वर्क डिस्प्ले होता है. साथ ही साथ अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें, सो दिस वॉज गिफ्टेड बाई फ्रांस इन 1886. और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इट बिकेम अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, ऑफ डेमोक्रेसी एंड होप फॉर मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स अराइविंग इन अमेरिका. गेटवे टू अमेरिका भी माना जाता है न्यूयॉर्क को. ओवर 12 मिलियन इमिग्रेंट्स एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू एलिस आइलैंड, मेकिंग न्यूयॉर्क द गेटवे टू अमेरिका.

Well, that was the title track, Kal Ho Na Ho. You know, एक और बात आपको बताऊं न्यूयॉर्क से रिलेटेड, तो वो ये है दैट ऑल्दो द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्चुअली साइंड इन फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क दो ब्रीफली सर्व्ड एज द फर्स्ट यूएस कैपिटल, पता है इन 1789 जॉर्ज वॉशिंगटन टुक द वेरी फर्स्ट प्रेजिडेंशियल ओथ एट फेडरल हॉल नेशनल मेमोरियल ऑन वॉल स्ट्रीट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
9: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
8: Jahan har flavor kare full on entertain the flavor lounge.
9: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
10: Is saal to kamaal ho gaya, hamara revenue double ho gaya.
11: Sir, acha hai, lekin aapne tax planning kiya?
10: Nahi.
11: Bookkeeping updated hai?
10: Nahi.
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
5: AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
21: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

दिस इज के जी एम पी 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, एक बार कुछ और भी बातें होगी। जी हाँ, सैटरडे 3 बजे तक होता है ये हमारी आपकी बातें, और 3 बजे तक जो बातें होती है 2 से 3 के बीच में वो होती है कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी राउंड अप में। एंड 12 से 2 के बीच में थीम बेस्ड गाने प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम ऑन 104.9 FM। मधुलिका को आपने सुना टिल 12, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मधुलिका को। और अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। देखिए, अमूमन हमारी यहाँ बातें होती है आपके साथ तो कलाकारों पे होती है, किसी एक ही विषय पे फिल्मों की बातें होती है, शब्द पर आधारित गाने और ऐसे बहुत सारी बातें होती है ना। आज हम करेंगे 4th of July की बातें। तो आप सोचेंगे 4th of July आज ही है, बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़े से ज्ञान की बातें होगी, कुछ ज्ञान आप हमें देंगे, कुछ बातें हम आपसे करेंगे और हम आपको ले चलेंगे एक बार फिर से स्कूल में जहाँ पर हम बहुत सारी बातें पढ़े थे। भाई ये है हमारी कर्मभूमि, ये है अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें ऐसी कुछ तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, है ना। तो बस ऐसी बहुत सारी बातें होगी कुछ मिले जुले गानों के साथ, आपके साथ, आपके ढेर सारे प्यार और कॉल्स के साथ, टिल 2 PM ऑन 104.9 FM।

104.9 FM Phoenicia Radio पे आप हैं, मेरी यानी नीलम के साथ. वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जी हाँ, 250th. तो जैसे कि हमने कहा कि आज मिले जुले गाने बिल्कुल आप सुनेंगे, लेकिन कोई बॉलीवुड के सवाल नहीं होंगे. सवाल जवाब जो होंगे वो होगी अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए, हमारी कर्मभूमि के लिए. तो कुछ आसान सवाल ही होंगे. ऐसी बात नहीं कि मैं आपको एकदम कठिन कठिन सवाल पूछूंगी और आपको बोलूंगी कि भाई ए ग्रेड लाना है तो ये जवाब तो आने ही चाहिए, वरना आप ए ग्रेड नहीं लाएंगे, ऐसी कोई बात होगी नहीं. लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमने हमारे ख्वाब बुने हैं, ये सारी बातें जहाँ पर हमने बुनी है, उस कंट्री के लिए, उस वतन के लिए, उस देश के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए, है ना. तो चलिए सुनते हैं एक और गीत और उसके बाद होगा पहला सवाल ऑन 104.9 FM.

0: 250 साल पहले शुरू हुई एक कहानी जो आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन गई है। जी हाँ, आज शो में कुछ मज़ेदार बातें, कुछ दिलचस्प ट्रिविया और कुछ आसान सवाल, बहुत बहुत आसान सवाल हो गए आप सभी के लिए ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। तो चलिए, पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हम 250th कहते हैं तो किस साल में आज़ादी मिली थी US को? इंडिपेंडेंस डे 4th of July तो आप सभी जानते हैं, गूगल करना चाहेंगे तो कर लीजिए, लेकिन गाड़ी में होंगे तो पता नहीं गूगल से आप कैसे बात करेंगे। आजकल तो भाई AI का ज़माना है, तो भाई मुझे पता नहीं कि हाउ वुड यू एंटर इट, लेकिन अगर आपको जवाब पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि विच ईयर वॉज दैट, कि जब मना रहे थे हम पहली बार आज़ादी को। लूँगी कुछ कॉल्स ऑन एयर, लेकिन एक नम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप ऑन एयर आए, आपकी रेडियो की आवाज़ कम कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ आज मज़ेदार बातें होगी इस मिट्टी की जहाँ पर हम रह रहे बहुत ही सालों से। फनीशा, रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिएगा। रेडियो की आवाज़ अगर आपकी ज़्यादा होगी तो मैं आपको नहीं सुन पाऊँगी और ना तो आपको पता चलेगा कि आप ऑन एयर हैं। तो फिर से प्लीज़ ट्राई कीजिएगा 972-235-5555। कुछ बातें हो रही है आप सभी के साथ अमेरिका की, जी हाँ, क्योंकि आज है 4th of July, इंडिपेंडेंस डे, 250th ईयर। जी हाँ, कितनी बड़ी बात है ना। तो चलिए, आप सभी के साथ एक बार फिर से जश्न मनाएंगे हम, कुछ बातें होगी इसी मिट्टी की। एंड फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हेलो।
0: यस सर, यू आर ऑन एयर, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: 1776
0: आपका सही जवाब है, आपको A+ मिल गया आज तो।
1: Oh my God, मैं कभी नहीं मिला।
0: फनीशा, you are live on air.
1: मेरा नाम महबूब मर्चेंट है, अपने को 1776 में आज़ादी मिली थी।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, very good. And Phanisha, you are live on air. Yes, and I think I lost that line. जी, आपका जवाब बताइए, you are on air.
2: क्या question क्या है?
0: जी जी, बताइए कौन सा जवाब है, क्या कहा आपने?
2: आपका पहले क्वेश्चन बता दी, मैंने अभी लगाया।
0: जी जी, विच ईयर वाज दैट व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, कौन सा साल था?
2: पता नहीं, हम तो शायद पैदा ही नहीं हुए थे।
0: ओके, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिएगा। फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
3: हेलो।
0: यस सर।
3: हाय, माय नेम बर्नेस।
0: जी जी, बताइए क्या है आपका जवाब।
3: 1776
0: आपका सही जवाब और आप बन गए करोड़पति।

0: 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM एंड ऑन संडेज 2 बजे तक रहता है आप पर हमारा साथ। ओम जी, बिल्कुल ओमार ख्वाजा को हम याद करेंगे, क्योंकि कभी कभार ये बातें हो जाती है कि जब छोटे या मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे पूरा ध्यान होता है हमारी सेहत पे, हमारे परिवार पे, और उसी वक्त हमें चाहिए मदद किसी अटर्नी की, एंड इट कैन बी ओमार ख्वाजा। 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर, लेकिन अगर आप उनका नंबर देखना चाहें या उनका नंबर कहें तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एंड उनका नंबर है 4693005046, और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार .com वंस अगेन, दैट इज 4693005046, और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार .com 9722355555। बहुत सारी बातें होने वाली है आज, कुछ इस वतन की, इस मिट्टी की जो हमारे लिए है, हमारे सपनों की भूमि, ये कर्म भूमि हमारी, और इसीलिए आज हम मना रहे हैं 250th, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है ना। तो इसी माइलस्टोन के तहत बहुत सारे कुछ मज़ेदार सवाल होंगे आप सभी के लिए, कुछ आपके मज़ेदार जवाब होंगे, कुछ आपकी ही होगी जानकारी हमारे लिए। और 104.9 FM फनेशा रेडियो, मैं हूँ नीलम, कहीं मत जाएगा, 2 बजे तक होगा ये सेगमेंट, एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी आउटरीच की प्रस्तुति जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप, जहां पर हमारे शहर में होने वाले बहुत सारे इवेंट्स की, नॉन प्रॉफिट्स की जानकारी हम आपको देते हैं टिल 3 PM, एंड दैट इज एवरी सैटरडे 2 से 3 के बीच में, आप ही के लिए ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।
1: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है?
2: हाँ, देख लेंगे।
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाए?
2: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस, PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलस न्यूएस्ट।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए, और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सीरीज, इरविंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
7: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
10: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हूँ, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
13: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
15: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर? एट shopcompareinsure.com, वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स, वी आर ग्रोइंग अ नेटवर्क ऑफ सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स। वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड और जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, वी प्रोवाइड द टूल्स, ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड एक्सेस टू टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स लाइक एन्युइटीज, टर्म लाइफ, होल लाइफ एंड IUL टू हेल्प यू सक्सीड। वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स, बिल्ड योर ओन इनकम, मेक अ रियल इंपैक्ट।
16: विजिट shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
17: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group?
1: Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ इस सेगमेंट में एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड टिल 3 PM ऑन सैटरडेज संडेज 2 बजे तक। आपका और हमारा साथ होता है ये म्यूजिकल साथ, जहां पर गाने कोई भी विषय हो, कोई भी सेगमेंट हो, गाने होंगे बहुत ही सुरीले। यह है मेरा यानी कि नीलम का वादा। और आज मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर रही हूं अमेरिका के लिए, क्यों ना हो भाई, क्योंकि बहुत बड़ा माइलस्टोन है, 250th सेलिब्रेशन की बातें हो रही है, और इसीलिए कुछ आसान सवाल जवाब आप ही के लिए। ऐसी बात नहीं है कि आपको ग्रेड्स A+, B+ या C+, लेकिन यू नो, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ की हम बातें हर रोज, हमारे सपने बुनते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हुए, हमारे बच्चे बड़े हुए, एंड वी आर सिटीजन, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो प्रॉबेबली सिटीजन, और कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ना कुछ वैलिडिटी होगी। तो बस ये जो कंट्री है हमारी, हो सकता है कि आप आपके वतन से, आपकी जन्मभूमि से ज़्यादा यहाँ पर रहे होगे, तो इसके लिए कुछ और मज़ेदार बातें आपको जाननी होती है ना। ये सारी मज़ेदार बातें आप ही के साथ होगी टिल 2 PM ऑन 104.9 FM।

0: तो चलिए भाई, एक और सवाल हो जाए आप सभी के लिए. आप मुझे बताएंगे कि अमेरिका का नेशनल बर्ड कौन सा है. फिर से मैं सवाल दोहरा रही हूँ, राष्ट्रीय पक्षी हम जिसे कहते हैं नेशनल बर्ड, वो है कौन सा. यहाँ पे आप मुझे बताएंगे. और जब भी आप ऑन एयर आए, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके रेडियो की आवाज़ बिल्कुल हो कम, ताकि आपकी आवाज़ हम क्लियरली सुन पाए. फिर से सवाल दोहरा रही हूँ, नेशनल बर्ड आप मुझे बताएंगे कि यूएसए का नेशनल बर्ड कौन सा है. 9722355555 कहेंगे जब आप मुझे आप, और मैं सुनवाऊंगी आपको गाने ऑन 104.9 FM टिल 2 PM. ये सेगमेंट आप ही किस सेवा में, विथ मी योर होस्ट नीलम एंड फनीश. आर योर लाइफ ऑन एयर. हेलो.
1: हेलो.
0: यस सर.
1: यस, थैंक यू. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स व्हाइट ईगल.
0: व्हाइट ईगल. ओके सर. और आपका नाम क्या है?
1: सोहेल नीलम जी.
0: सोहेल जी, क्या बात है. गुड आफ्टरनून टू यू सर.
1: गुड आफ्टरनून. केम छो? मजा मत लो.
0: थैंक यू सोहेल
1: जी. एकदम मजा मा.
0: जी जी सर. थैंक यू सर फॉर लिसनिंग. एंड फनीशिया, योर लाइव ऑन एयर. हेलो.
2: या, इट्स अ गोल्ड ईगल.
0: ऑलराइट. एंड योर नेम प्लीज.
2: माय नेम इज कल्पना रुजानी.
0: कल्पना जी, एंड लास्ट कॉलर ऑन एयर. बताइए कौन सा है आपका जवाब.
3: बॉइल्ड ईगल.
0: Wow, and how old are you, beta?
3: 7.
0: 7, and are you enjoying your summer vacation?
3: Yes.
0: Yes, are you going to any summer camps or are you just watching TV and playing video games?
3: Going to a summer camp.
0: Going to a summer camp, and what do they teach you there, beta?
3: They teach us a math. For 2 hours and English for 1 hour.
0: Very nice. And can you teach me math? Because Neelam aunty is very, very not good in the math. I don't like math. So maybe I'll come to you to learn math. How about that?
3: I'm really bad at math also.
0: Oh. So we both will go to summer camp together. Would that work?
3: Okay.
0: Okay. And what's your name?
3: Vedika.
0: Devika, I'll come to summer camp with you tomorrow. Not tomorrow, Monday you go, right?
3: Yes.
0: Okay, then we'll see you there. Thank you, beta.

104.9 FM फनेशा रेडियो 4th of July 1776. और जी हाँ, आज हमने कंप्लीट किए 250th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन. आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ. और इसीलिए मैं नीलम आज कुछ मिले जुले गानों के साथ आपको सुनवा रही हूँ, और उसी के साथ कुछ सवाल भी आपको पूछ रही हूँ. नेशनल बर्ड की हम बात कर रहे थे, राष्ट्रीय पक्षी. अभी भी इतने सारे कॉल्स जारी है अभी भी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो, जब आपसे बहुत सारी ऑफर भी बातें होती है कि आप इतने ध्यान से प्यार से सारे सवाल सुनते हैं और सारे सवाल के लिए जवाब भी देते. जी हाँ, इट इज़ बोल्ड ईगल. जो वाइट फेदर्स होते हैं तो कई लोग उसे वाइट ईगल भी कहते हैं. दैट इज़ अ नेशनल बर्ड. 5 मिनट बाकी है कमर्शियल ब्रेक में, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अभी सवाल पूछूंगी तो इतने सारे कॉल्स होंगे कि मैं आपको गाने नहीं सुनवा पाऊंगी. क्यों ना हम एक गाना सुन ले, उसके बाद जाएंगे कमर्शियल ब्रेक पे, और उसके बाद मैं एक बार फिर से आपको एक और सवाल पूछूंगी. 250th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यूएसए क्यों हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
8: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
9: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Bhook lagi hai ya bas kuch exceptional khana hai?
11: Street style chaats, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
12: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99 or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu and your choice of large fries or five rings. Dine in only.
16: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to karna hi padega, madam.
19: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Not just that, from July 3rd to 5th, Tandoori Flame celebrates Red, White and Spice Festival. Free mocktail with every entree purchase. And kids under 10 get free ice cream. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
21: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
22: And welcome
0: वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड. जी हाँ, 3 बजे तक आज आपका साथ होगा हमारे साथ एंड ऑन संडेज 2 बजे तक. ड्रीम होम मॉर्गेज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. हुसैन भाई जी को आज ही कॉल कीजिएगा, नंबर है उनका 9722455626. आपके सपनों के घर को तो आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद मॉर्गेज का क्या, है ना? तो पर्सनलाइज आपकी जो भी सॉल्यूशन होगी वो आपको मदद करेंगे, एंड दैट इज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस हुसैन भाई के साथ. वंस अगेन दैट इज 9722455626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com. घर खरीदना, शादी, ये सारे बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, और उसी के साथ हम त्यौहार तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, त्यौहार नहीं, माइलस्टोन्स होते हैं, राइट? दैट्स द राइट वर्ड, माइलस्टोन्स होते हैं हमारी जिंदगी के. तो शादी हो या कोई त्यौहार हो या घर खरीद लिया और पूजा करनी है तो ज्वेलरी तो चाहिए, तो उसके लिए आप जा सकते हैं श्री कृष्णा ज्वेलर्स में. दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को और उनकी जो एड्रेस है दैट इज 13145 स्ट्रीट नंबर 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को टेक्सस. Since 1967, जी हाँ, आप ही की सेवा में, एंड दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड ब्यूटी. श्री कृष्णा ज्वेलर्स. मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड, और आज पूरा नेशन, पूरा अमेरिका मना रहा है 250th इंडिपेंडेंस डे, यानी 250 साल की आजादी का जश्न. सोचिए जरा, जैसे कि मैंने कहा 250 years, ऐसे देखा जाए तो यू नो इट्स नॉट मैनी मैनी ईयर्स अगो, राइट? लेकिन फिर भी जिस तरह से, जिस मेहनत से सारे इमिग्रेंट्स ने आकर इसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया, जो आज है हमारी, मैं कहूँगी वतन ऑलमोस्ट, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे, हो सकता है आप यहाँ इस मिट्टी पे अपनी मिट्टी से ज़्यादा रहे हो. तो आज के शो में कुछ मज़ेदार बातें हो रही है, कुछ दिलचस्प ट्रिविया, कुछ आसान सवाल, बहुत बहुत आसान सवाल हो रहे हैं. तो चलिए एक और गीत सुन लेते हैं, उसके बाद एक और सवाल होगा आप ही के लिए. 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम.

सबका तमन्नत अली साहब, उनके साथ विशाल शेखर की आवाज और उन्हीं का संगीत। और इन दोनों धुरंधर कंपोजर और सिंगर्स को भी आप देख सकते हैं लाइव हियर इन डैलस। कब? तो दैट इज हैपनिंग ऑन जुलाई 12th। जी हाँ, इतनी दूर नहीं है बात, आज जुलाई 4th। सो नेक्स्ट संडे दैट इज जुलाई 12th, एक्चुअली टुडे इज जुलाई 4th, आप जा सकते हैं एट द कर्टिस करविल सेंटर इन गार्लैंड। cashpatelproductions.com is the website to log on, and if you enter the code FUNASIA, जी हाँ, आप हमारे रेडियो का, आपके रेडियो का नाम एंटर कर दीजिए और देखिए आपको 30% डिस्काउंट मिल सकता है। Once again, that is cashpatelproductions.com। बातें हो रही है भाई मजेदार ट्रिविया, क्योंकि जहां पर हम बच्चे थे तब स्कूल में आपने इंडिया की, पाकिस्तान की, या कहीं जेब जहां पर भी आप बड़े हुए होंगे वहां का इतिहास, वहां की सारी बातें जानकर ली होगी। लेकिन यहां पर आने के बाद इफ़ यू रिमेंबर टू बिकम अ सिटीजन, कुछ सवाल आपको देने पड़े होंगे, राइट? कुछ टेस्ट आपको देने पड़े होंगे, तो वो सारे आपने रटे थे या नहीं रटे थे, वो मैं आज आपको पूछ रही हूँ। और दूसरा सवाल, तीसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। तो ये सवाल ये है कि हमने नेशनल बर्ड की तो बात कर ली, दैट इज ईगल, वाइट ईगल या बोल्ड ईगल भी इसे कहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द खेल, यानी कि राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है यूएसए का? थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप मुझे बताइए। वंस अगेन इट इज द क्वेश्चन इज कि हमारे कंट्री का, अमेरिका का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? 972-235-5555। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूंगी टिल 3 PM ऑन 104.9 FM।

0: बिल्कुल, हम हैं आप ही के ऑन एवरी वीकेंड होता है साथ. एंड बताइए क्या है आपका जवाब?
1: बेसबॉल.
0: बेसबॉल. ऑल राइट सर, डू यू लाइक वॉचिंग बेसबॉल?
1: या ओनली इन प्लेऑफ टाइम.
0: ऑल राइट, ओके. वनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर.
2: इज इट बेसबॉल?
0: इट इज बेसबॉल. और आप देखती हो टीवी पे बेसबॉल? आपके बच्चे खेलते होंगे?
2: नहीं,
0: आप नहीं देखती हो? आप भी मेरी तरह है, मैं भी कुछ नहीं देखती टीवी पे.

0: जी बिल्कुल, बेसबॉल और अभी भी इतने सारे कॉल जारी है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स इज बेसबॉल। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपको खाने की चीज़ के लिए पूछना चाहूँगी। इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर हर त्यौहार के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। खाने की बात कर ले, अगर थैंक्स गिविंग की बात है तो ऑफकोर्स वी ऑल रिमेंबर टर्की, अगर आप खाए ना खाए लेकिन ये बात की जानकारी आपको होगी ही। सिमिलरली इंडिपेंडेंस डे पर सबसे लोकप्रिय खाने की चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा क्या? वाई यू नो आई वुड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, ऑफकोर्स हम तो हम सारी चीज़ें खाएंगे। अगर मैं आपको पूछूंगी तो आपकी लंबी लिस्ट होगी कि कौन से देसी खाने आप खाते। आई एम आस्किंग अबाउट अ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस डे पर सबसे लोकप्रिय चीज़ खाने के लिए क्या है। और मैं आपको देन आई विल गिव यू द काउंट कि ये चीज़ कितनी खाई जाती है इन ऑन जस्ट वन सिंगल डे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस डे पर सबसे लोकप्रिय अगर खाने की चीज़ की बात कर ले तो वो क्या है। एंड यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: बर्गर।
0: बर्गर, ओके आई विल टेक दैट आंसर। बर्गर नहीं है, तो आप फिर से सोचिए कि कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है ऑन दिस डे। 104.9 FM फनेशा रेडियो, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूंगी टिल 3 PM। एंड सवाल है सबसे लोकप्रिय खाना फॉर द 4th of July। एक और कॉलर को ऑन एयर ले लूंगी। एंड फनेशा योर लाइव ऑन एयर। हेलो, हॉट डॉग्स, ओके। आप की ये गैस है या आपने देखा है, आपको जानकारी है?
2: मुझको जानकारी है।
0: ओके वंडरफुल वनेशिया, योर लाइव ऑन एयर।
2: स्टेक।
0: सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, क्या है आपका जवाब?
2: स्टेक।
0: नॉट रियली वनेशिया, योर लाइव ऑन एयर।
3: हेलो,
0: यस यूर ऑन एयर।
3: हाय, या

0: dear. It is the most famous for the 4th of July is the doing the barbecue, eating lots of corn and hot dogs.
1: Okay, have you ever tried that? Have you gone to any barbecue जहाँ पर हॉट डॉग और कॉर्न्स होते हैं? या आप आपके घर पर ही बनाती हो?
0: या घर सबको बुला के बाबी की पार्टी होती है.
1: अरे वाह, आप करती हो या आप पार्टीज में जाती हो?
0: मैं बुलाती भी और जाती भी हूँ.
1: हाँ, फनी शरीरों को तो कभी बुलाया नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा.
0: नेक्स्ट टाइम पक्का.
1: लेकिन मैं
0: अभी आज आ जाओ.
1: आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, आपको मेरे लिए कुछ और समोसे बनाने पड़ेंगे.
0: हाँ, साबुदाना टिक्की बनाऊंगी. बढ़िया,
1: साबुदाना की खिचड़ी. ऑलराइट, चलिए, ऑन 4th ऑफ जुलाई साबुदाने की खिचड़ी.

$150 million की बात नहीं कर रही हूँ भाई, हॉट डॉग्स की बात कर रही हूँ जी। 150 million हॉट डॉग्स खाए जाते हर साल 4th of July में अमेरिका में, अलग अलग शोज़ में, फायरवर्क शोज़ से लेके घर पे बारबेक्यू पार्टीज वगैरह वगैरह में। लेकिन 150 मिलियन इज़ ऑफिशियल काउंट कि जहाँ पूरे USA में, पूरे नेशन में इतने सारे हॉट डॉग्स खाए जाते। तो अगर आप समोसे खा ले, साबूदाना की खिचड़ी खा ले या कुछ और खा ले, लेकिन अगर आप हॉट डॉग्स नहीं खाया तो आपने क्या जश्न किया भाई 4th of July का। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ टिल 3 PM ऑन सैटरडेज। 4th of July सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, 250th बर्थडे ऑफ अमेरिका। और इसीलिए आज इतने सारे सवाल जो है हमारे बॉलीवुड के तहत नहीं है, फिल्मी गाने तो है बिल्कुल, लेकिन फिल्मी बातें, फिल्मी सवाल नहीं है। सवाल है आपके और हमारे इन सपनों की नगरी जिसे हम कहते हैं अमेरिका।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
3: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread, and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
5: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
8: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
10: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance. Solution.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
12: And welcome back. This is 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ नीलम आपके साथ. Once again, a very, very good afternoon to all of you and a very warm welcome. प्यार भरा स्वागत आप सभी का 104.9 FM Fun Asia Radio. आपका और हमारा साथ होगा 3 बजे तक. और आज मैं बातें लाई हूँ बॉलीवुड की नहीं भाई, हमारे इस अमेरिका की जो 250th birthday. Happy Independence Day to all of you. 1776 से लेके 2026 तक का ये सफ़र जारी किया एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस. इट इज़ 250th बर्थडे ऑफ दिस नेशन. लेकिन कुछ और गाने हो सवाल हो उससे पहले विजनरी आई केयर को याद कर ले, क्योंकि कभी कभी ये बातें होती है कि अगर आपको ग्लासेस है और कॉन्टेक्ट लेंसेज, आपको लगता है कि लीजिक सर्जरी क्यों ना करवा ले, बिल्कुल करवा ले, लेकिन उसके लिए आपको एक वेरी वेरी ट्रेंड आई सर्जन की जरूरत होती है ना। तो मैं आपको एक ऐसा नाम दे देती हूँ जहां पर आप जा सकते हैं, डॉक्टर सहजाद बाटली वाला, नंबर है उनका 2149722020, वंस अगेन दैट इज 2149722020, एंड इट इज विजनरी आई केयर जहां पर आप जा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन फनेशिया, जी हाँ, 2020 to receive a free consultation. Once again, that is Visionary Eye Care. AG Fintechs ko bhi yaad kar le, ji haan, tax season business ke liye to zari hoti hai, hamare liye April hoti hai, lekin unke liye to bhai charo, I think every 4 months, right? To AG Fintechs ko aap zarur call kar sakte hai, and their number is 4699429888, or you can visit agfintechs.com. Once again, that is 4699429888. Fastest growing tech firm in USA. तो चलिए कुछ गाने सुनते हैं और एक और सवाल होगा, और ये आखिरी सवाल होगा हमारे इस कार्यक्रम का, जहां पर हम आपके लिए बहुत सारे गाने लाए हैं, लेकिन सवाल है आपके और हमारे इस वतन को, जिसे हम वतन ही कहते हैं भाई, क्योंकि यहां पर हमारी सारी, ऑलमोस्ट सारी जिंदगी गई, एंड दैट इज USA.

104.9 FM Fun Asia Radio. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज. आपकी और हमारी म्यूजिकल मुलाकातें, बातें कोई भी हो, विषय कोई भी हो, लेकिन गाने होते हैं बहुत ही सुरीले. चलिए अब आखिरी सवाल इस सेगमेंट का कि भाई अमेरिका का नाम जो है सबसे बड़ा नाम है, जी हम जानते हैं, लेकिन अमेरिका का नाम किन पर रखा गया, किसके नाम पर पड़ा है, तो आप मुझे बताएंगे ये कि हु इज अमेरिका नेम्ड आफ्टर. 104.9 FM फनीशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, और जवाब देंगे हमें आप कि भाई इस कंट्री का नाम अमेरिका तो हमने रख दिया, लेकिन किन के नाम पर. 104.9 FM एंड द नंबर इज 9722355555. जवाब देंगे हमें आप.

0: सवाल मैंने पूछा है, अमेरिका का नाम किन पर रखा गया है? इनफॉर्मेशन, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो
1: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ।
0: जी जी बताइए।
1: ये अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर
0: अमेरिको
1: रखा गया।
0: वेस्पुची। ऑलराइट, आई विल टेक दैट आंसर।

0: स्टैंड बाय मी ऑन 104.9 एफएम फनेशिया रेडियो अमेरिको वेस्ट पूछी. जी हाँ, यह है सही जवाब. और इटली के थे नेविगेटर वो कि जिन्हों जिनके नाम पर ये हमारी जो जमीन है अमेरिका नाम रखा गया था. एंड फनेशिया यू लाइव ऑन एयर. हेलो.
1: या दिस इज अली. आई जस्ट हैड वन सजेशन इफ यू डोंट माइंड.
0: श्योर सर, कैन आई टेक योर फेयर फॉर दैट. अमेरिको वेस्पुची के नाम पर रखी गई थी एक कंट्री का नाम. लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी ये कि इस जमी को ढूंढा किसने था. तो बताएंगे मुझे आप 9722355555 जमी को किसने ढूंढा था और इसके बाद नाम की कुछ कहानी हम आपको बताएंगे. तो बने रहिए हमारे साथ टिल 2 PM.

अमेरिका का नाम इटली के एक बहुत ही मशहूर जिसे कहते हैं नेविगेटर, जी हाँ, उन पर रखा गया था एंड उनका नाम अमेरिको वेस्पुची। अब आप सोचते होंगे कि भाई उन्होंने तो ये ज़मीन ढूंढी नहीं थी। जी बिल्कुल, क्रिस्टोफर कोलम्बस ने ज़मीन को ढूंढा था, लेकिन जब उन्होंने ये ज़मीन ढूंढी थी उन्हें ये लगा था कि उन्हें नहीं पता था कि दिस इज़ नॉट एशिया। उन्हें लग रहा था क्योंकि वो भारत को ढूंढने निकले थे, तो उन्हें लगा था कि ये एशिया की ही कोई कोई ज़मीन है। लेकिन अमेरिको वेस्पुची वॉज द फर्स्ट एवर पर्सन जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि एशिया नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड। और इसीलिए ये जो कॉन्टिनेंट है उसका पूरा नाम रखा गया था अमेरिको पे, एंड दैट इज अमेरिका। 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूँ नीलम। चलिए एक और गाना सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टोफर कोलंबस की। टिल 2 PM साथ होगा आपका हमारा इस सेगमेंट में।

क्रिस्टोफर कोलम्बस के लिए ऑफकोर्स बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कि किस तरह से वो भारत इंडिया को ढूंढने निकले थे, एंड ऑफ कोर्स ही फाउंड दिस आइलैंड एज वेल. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिस इज़ नॉट जो वो मानते थे एशिया की लैंड नहीं है ये, दिस इज़ अ डिफरेंट आइलैंड. और अमेरिको वेस्पुची एक ऐसे नेविगेटर थे कि जिन्होंने सारी दुनिया को बताया कि भाई दिस इज़ नॉट एशिया, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, और इसीलिए उनका नाम रखा गया अमेरिका उनके ही नाम पे. और आप जानते हैं एक चौंकाने देने वाली बात यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी यात्राएं की. ऑफ कोर्स ही वाज अ ग्रेट ग्रेट सेलर, तो बहुत सारी समुद्री यात्राएं जिसे हम कहते हैं उन्होंने की, लेकिन कभी भी इस ज़मीन पर उन्होंने कदम नहीं रखा था. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, ये ज़मीन को उन्होंने बिल्कुल ढूंढा था, लेकिन वो हमेशा कैरेबियन आइलैंड जो होते हैं हमारे क्यूबा बहामास वगैरह वगैरह एंड यू नो सेंट्रल अमेरिका के आसपास ही घूमते रहे थे. कभी भी ही कुडंट कम ऑन दिस लैंड, लेकिन बिल्कुल जो ढूंढने का श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को. बस ऐसी बहुत सारी बातें आज आप सभी के लिए मैंने प्रस्तुत में लाई थी यहाँ पर, और प्रस्तुत की मैंने टिल 2 PM ये साथ होगा, एंड राइट आफ्टर 2 PM हमारी बातें होगी कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी राउंड अप में, जहाँ पर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन से बातें होती है, उनके अपकमिंग इवेंट्स एक्टिविटीज़ की मैं आपको जानकारी देती हूँ. ये सारी बातें, ये सारी जानकारी टिल 3 PM ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर वंस अगेन विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी वीकेंड.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
7: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो।
18: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
15: आजा मेरी गाड़ी।

104.9 FM Phanesha Radio पे मैं हूँ नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम. स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जो आपके लिए मैं नीलम प्रस्तुत कर रही हूँ टिल 3 PM. और कार्यक्रम का नाम है कम्युनिटी राउंड अप, जहाँ आपके लिए कुछ बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी और उसी के साथ जुड़ते हैं हमारे साथ सामाजिक या धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि टिल 3 PM. कार्यक्रम के दौरान आप ही के लिए हम लाते हैं कुछ पेट्रियोटिक इंस्पिरेशन मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल गाने आप ही के पसंद के. जी हाँ, ये कार्यक्रम है आपका, आप ही से बनता है. 104.9 FM फनीशा रेडियो ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज है 250th बर्थडे ऑफ दिस नेशन. जी हाँ, 250th बर्थडे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे 104.9 FM फनीशा रेडियो आपके साथ, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे हर शनिवार की दोपहर 3 बजे तक विथ मी योर होस्ट नीलम.

अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है 104.9 FM फन एशिया रेडियो। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और आप भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, और आप सोचते हैं कि आपकी जो भी अपकमिंग इवेंट्स, एक्टिविटीज़ है, उसकी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, देन डू रीच आउट टू मी एंड इट इज़ neelam@funasia.net। एकल विद्यालय फाउंडेशन के फंड रेजिंग एनुअल इवेंट इज हैपनिंग ऑन 28th of August एट ग्रैंडविल आर्ट सेंटर इन गार्लैंड, दैट इज कथक ऑन दिस सिल्वर स्क्रीन, वंस अगेन दैट इज बाय एकल विद्यालय।

ये दीवारे मिटाओ, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो टेक्सास प्राइमरी केयर की। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ, फॉर द लास्ट 13 ईयर्स दे हैव बीन सर्विंग फॉर एंटायर कम्युनिटी। जी हाँ, एंड प्राउडली केयरिंग फॉर एंटायर कम्युनिटी। अब उनका एक नया नाम एंड दूसरा लोकेशन, दैट इज़ इन फ्रिस्को, इंट्रोड्यूसिंग लिनोक्सी मेडिकल एंड दैट इज़ बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। जी हाँ, जहाँ पर आप प्राइमरी केयर से लेकर अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए जा सकते हैं। वंस अगेन, इट इज़ लोकेटेड इन फ्रिस्को एंड द नेम इज़ प्राइमरी केयर का दूसरा लोकेशन लिनोक्सी मेडिकल। फ्रॉम 8 AM टिल 8 PM, 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, 7 days a week। जी हाँ, आपने सही सुना, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई डॉक्टर की ऑफिस सैटरडे खुली हो तो क्या बात है, क्योंकि हमें यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द वे, राइट? वेर एवर यू हैव अ मीटिंग्स एंड कॉल्स एंड देन वो सारी बातें स्किप करके मंडे टू फ्राइडे में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन अब आपके लिए अच्छी खबर ये है कि यू कैन ऑल्सो गो ऑन सैटरडेज एंड संडेज 8 AM टिल 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड। वंस अगेन, दैट इज इन फ्रिस्को, 7 days a week, लिनोक्सी मेडिकल केयर। नवनीता खेमका को आपने बिल्कुल हमारे रेडियो शो में सुना है, हमारे फन एशिया में सुना है। नाउ शी इज हियर विथ केलर विलियम्स रियल्टी। जी हाँ, जहाँ पर आप उनको कॉल कर सकते हैं 347-449-4242। आपके सपनों के घर के लिए वंस अगेन, दैट इज नवनीता खेमका, बिकॉज एवरी होम एज अ स्टोरी, सो लेट हर हेल्प यू टू क्रिएट योर्स, नवनीता खेमका। और मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी सैटरडेज एंड संडे। सैटरडेज आपकी और हमारी बातें मुलाकातें होती है 3 बजे तक, संडेज 2 बजे तक, 12 से 2 के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ ऑन एवरी संडे 104.9 FM। और भी कुछ बातें और भी कुछ गाने हैं एंड यू नो, आज हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब एक कहानी मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि एक ही देश या एक ही बात है, कि एक ही आर्मी की बात है। इट इज़, जब मैंने वो कहानी पढ़ी थी, इट वॉज अबाउट एवरी कंट्री, एवरी नेशन। तो क्या है वो कहानी, थोड़ा सा इंतज़ार, आपको मैं बताऊंगी। लेकिन कुछ गाने कुछ बातें, हमारे साथ बने रहिए ऑन 104.9 FM।

0: सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को जैसे मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसे ही शरण में तेरी आया। जी बिल्कुल, सूरज की गर्मियाँ बहुत ही है, तो तरोवर की छाया आपके ज़िंदगी में रहे और उसी के साथ राम नाम की छाया भी आप ही के ज़िंदगी में रहे। मैं हूँ नीलम, आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ ये हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। डब्ल्यू हिंदू टेम्पल में पिछले शनिवार से शुरू हो गई है भागवत कथा का, जी हाँ, बहुत ही अद्भुत आयोजन किया गया है। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे, तो अगर अभी तक आप नहीं जा पाए, आज आपके लिए आखिरी दिन, आखिरी मौका, ज़रूर जाइएगा। इट इज़ हैपनिंग 3 to 6 PM एट DFW हिंदू टेम्पल। और भी उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप लॉग ऑन कर सकते हैं, DFWHinduTemple.org, दैट इज़ DFWHinduTemple.org। और कुछ बातें होगी कमर्शियल ब्रेक के बाद, आपके साथ जुड़ेंगे एक हमारे सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, उसी के साथ एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कौन सी कहानी, कौन से गाने, कौन सी बातें, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और बहुत सारे गाने होते हैं इंस्पिरेशनल, पैट्रियोटिक और मोटिवेशनल, आप ही की पसंद के, जी हाँ, क्योंकि यह है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है, आप ही की पसंद से बनता है, आप ही की बातों से बनता है, हमारे साथ, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ, हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM। और आज है 250th बर्थडे, जी हाँ, वेरी वेरी बिग माइलस्टोन फॉर एंटायर नेशन। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके बहुत सारे प्लान्स हो गए फायरवर्क से लेके कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस।
1: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: Foodistan in Aubrey. Everything desi, one place, one vibe.
5: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread, and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
6: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
10: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

फनेशा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर, और मैं हूँ नीलम आपके साथ। इस गाने के बाद एक कहानी जो मैंने सुनी थी या पढ़ी थी, एंड यू नो अगेन इट इज़ जस्ट नॉट रियली पर्टेनिंग टू वन कंट्री और वन आर्मी और वन नेशन। ये जो कहानी मैंने पढ़ी थी मुझे इतनी अच्छी और रियलिस्टिक लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी से मैं शेयर करूँगी, लेकिन एज आई सेड राइट आफ्टर दिस सॉन्ग।

104.9 FM Phoenicia Radio, और जैसे कि मैंने कहा कि एक इंस्पिरेशनल कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग आई रेड इट ऑनलाइन नाउ, तो मुझे लगा कि चलिए मैं आप सभी से शेयर करती हूँ. एंड अगेन, इट इज़ जस्ट नॉट पर्टेनिंग टू वन नेशन, वन आर्मी या वन एक ही कंट्री की बात नहीं है. जो जो भी इतनी कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, उन सारे लोगों की बात है, एक आदमी की भी बात हो सकती है. सो कहानी ऐसी थी कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक मैनेजर साहब अपने परिवार के साथ लद्दाख घूमने जाते हैं, जहाँ उनके जो टूर में ऐसे एज यू नो कि जो स्थानीय लोकल ड्राइवर्स होते हैं जो उन्हें घुमाते हैं, जो बहुत ही हंसमुखा मददगार एंड यू नो बहुत ही यंग लड़का था, मे बी 28-30 साल का. तो पूरे हफ्ते उस ड्राइवर ने सारे सफ़र में उनकी जितने साइट सींग थे वगैरह उन्होंने वो मैनेजर को दिखाए. वापस जा रहे थे, तब तक दोस्ती वो अच्छी हो रही थी, तो मैनेजर साहब के मन में एक सवाल आया. तो गाड़ी में उन्होंने पूछा कि भाई, ये तो जो आप लद्दाख की जो ठंड है इतनी, एंड द रीज़न इट्स ऑलवेज सो हाई अल्टीट्यूड पे, राइट? तो जब हम लोग सब चले जाएंगे, टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा, तब आप लोग क्या करते हैं? डू यू ऑल्सो गो लाइक अदर ड्राइवर्स की तरह, आप भी कहीं चले जाते हैं, गोवा, दिल्ली, मुंबई, जहाँ जहाँ भी आपको रोज़गार मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है? तो ड्राइवर ने बहुत ही आसानी से एंड वेरी वेरी नेचुरली मुस्कुराते कहा कि नहीं नहीं साहब, हम लद्दाख छोड़कर कहीं नहीं जाते. तो उन्होंने कहा कि भाई, यहाँ तो खून जमा देने वाली, हाड़ कंपाने वाली ठंड होती होगी, तो आप क्या करते हैं फिर? तो लड़के ने बहुत ही सादगी से, आराम से जवाब दे दिया कि मैं सर्दियों में सियाचिन चला जाता हूँ. तो मैनेजर साहब के मुंह से चीख निकल गई, ठंडी में, सोचिए ज़रा, सियाचिन, जो इट्स अ सो सच ए हाई ऑल्टीट्यूड, राइट? तो उन्होंने कहा कि भाई, वो दुनिया का सबसे ऊंचा और ख़तरनाक जो बॉर्डर लाइन है, खतरनाक युद्ध क्षेत्र भी हमें जैसे कहते हैं, जहाँ जो तापमान होता है -40 से लेकर 50 डिग्री तक गिर जाता है, तो वहाँ तो हज़ार गुना ज़्यादा ठंड होती है, ख़तरा भी होता है, तो आप क्या करते हो वहाँ पर? उतनी ही आसानी से, उतनी ही सादगी से ड्राइवर ने जवाब दिया कि वहाँ पर मैं इंडियन आर्मी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लोडर के रूप में काम करता हूँ, लेबरर के रूप में. तो अक्टूबर में जब टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो जाती है, तो हम सब मिलकर यहाँ के लड़के वहाँ पे जाते हैं, पैदल चलकर सियाचिन पे जाते हैं, और इस पैदल चलते चलते हमें 15 दिन भी लग जाते हैं. फिर उन्होंने कहा, वो लड़का धीरे धीरे बताने लगा कहानी कि सेना के जो डॉक्टर्स हैं, वो हमारी टेस्ट करते हैं वगैरह करते हैं, और फिर हमें वर्दी भी मिलती है, भारी बर्फीले जूते मिलते हैं, गर्म कपड़े मिलते हैं, हेलमेट भी मिलती है. इतना आराम से मैनेजर उन्हें सुन रहे थे, और उन्होंने पूछा कि लेकिन तुम्हारा काम क्या होता है वहाँ पे? इतनी ठंड, जहाँ पे -40 या -50 ठंड है, वहाँ पे आपका काम होता है क्या? उसने कहा कि देखो, जो भी जवान वहाँ पे रहते हैं बर्फ़ की चोटियों पर देश की रक्षा के लिए, उनको जो सप्लाइज होते हैं, जो फूड सप्लाइज, मेडिकल सप्लाइज, वो पहुँचाने का काम होता है हमारा. हमारी जो सेना होती है, हेलीकॉप्टर से हमें वो सारे राशन, केरोसिन, दवाइयाँ, हथियार वगैरह वगैरह ड्रॉप करती है. हम हमारी पीठ पर लादकर बिलो ज़ीरो डिग्री में, इतने बर्फीले तूफानों के बीच में भी, हमारी जितनी भी सेना की चौकी है वहाँ पर ये सप्लाई करते हैं. ये सुनकर उस आदमी की आँख में आँसू आ गए, मैनेजर साहब ने. उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ख़तरनाक काम है, ज़रा सा पैर फिसला, ज़रा सा कुछ बर्फीला तूफान आया, जान पहचानी मुमकिन नहीं होती होगी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो जो पहाड़ी नौजवान थे, उन्होंने एक चमक आ गई उसके चेहरे पर, और उसने कहा कि देखिए सर, ये जो आर्मी है, उनके पास तो बड़े बड़े मेडल्स से भी कीमती चीज़ें होती है ना, हमारे पास ऐसी कीमती चीज़ नहीं होती. हाँ, ख़तरा होता है, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि हमारे आर्मी के लिए हम कुछ कर रहे हैं. हमारी जो तैनात फौजी है, हमारे भाई है वहाँ पर, जो हमें देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमारे पीठ पर जो सामान होते हैं वो उनके खाने के सामान होते हैं, उनकी मेडिकल सप्लाईज होती है, उनका खाना, दवाइयाँ वगैरह वगैरह. उस वक्त वो जो मोमेंट होती है ना सर, उससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. उसे दुनिया की ना तो कोई दौलत खरीद सकती है, ना तो कोई मेडल खरीद सकते, क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ कर पाए. हमारी सेना जो हमारे तैनात है बॉर्डर पे, इतनी ठंड में उनके लिए हमने कुछ मदद कर दी, बस यही है हमारा मेडल, यही है हमारी फीस.

वंडरफुल बनाना एफएम फनी रेडियो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए, क्योंकि यह है आपका कार्यक्रम, आप ही से बनता है ये कार्यक्रम. शफी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस और हमारे सारी कम्युनिटी. जी हाँ, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहीं से भी, पूरे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट से, या फिर आप यहाँ से भी हैं, क्योंकि ये है हमारी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी, हमारी सबकी कम्युनिटी, जिसकी प्रस्तुति देते हैं हम आपको, जिसकी जानकारी हम आपको देते हैं यहाँ पर हर शनिवार की दोपहर. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप भी किसी प्रयास में हैं, किसी कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं, किसी धार्मिक संस्था के आप एक्टिविटीज़ हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या इंडिविजुअली यू आर ट्राइंग टू हेल्प एनी फैमिली, एनी स्टूडेंट ड्यूरिंग एनी मेडिकल इमरजेंसी वगैरह वगैरह, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे. उसके लिए प्लीज़ रीच आउट टू मी, neelam@funasia.net. वंस अगेन, दैट इज़ NEELAM@funasia.net. इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, अनुमति, आज्ञा. मुलाकात होगी इस सेगमेंट में अगले शनिवार, लेकिन आपकी और हमारी मुलाकात एक बार फिर से कल होगी किसी और सेगमेंट के साथ. तो तब तक के लिए, कीप लिसनिंग एंड एंजॉयिंग फनेशिया रेडियो.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
3: हाँ, देख लेंगे।
2: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
3: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
4: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread, and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
6: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
7: अरे, वो केक आया क्या?
8: डीजे कौन हैंडल करेगा?
7: डिकॉर्ड वाले को कॉल किया।
8: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
7: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
8: ऑसम इवेंट्स?
7: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
8: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
7: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
9: कॉल नाउ एट 214-725-7466. 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
10: Beta, 95% aaye?
11: Haan, mummy.
10: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
12: Mera?
10: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
12: Whoa.
13: School ka report card saal mein ek baar aata hai, but business ka report card har mahine. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: Mere kal wale khane mein dosa, aane wale khane mein dosa.
13: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
4: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
13: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
15: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
16: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
17: Visit psychicramnath.com. Call 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving और Garland में उपलब्ध।
18: Astrology readings for guidance only and results may vary.
19: अजी, सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे, सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
17: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स नॉट जस्ट दैट फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
9: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी सीता की रसोई जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को
10: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
9: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी
11: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals 15000 plus google reviews hazaron families ka bharosa visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338 469-734-3338 myfamilyhomeloan.com is powered by loan factory nmls 2025289 licensed mortgage broker in texas all loans subject to credit approval equal housing lender
12: filmon ka maza action drama aur romance mein hai aur khane ka maza har flavor ke जबरदस्त परफॉर्मेंस में
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट

0: Hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
3: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. वेलकम बैक. हम भी आपका स्वागत करते हैं 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीना असनाथ, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 4th ऑफ जुलाई. और चार बज रहे हैं, यानी कि इट्स 4 o'clock राइट नाउ, 6 minutes past 4. एंड दिस इज बोली प्यार की, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं रीजनल सॉन्ग्स ऑल बाय रिक्वेस्ट. किसी भी साउथ एशियन लैंग्वेज के गाने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिंपली बाय कॉलिंग 9722355555. बस ख्याल रखिए, हर लैंग्वेज के हम सिर्फ दो ही गाने प्ले करते हैं एंड देयर इज अ वेट एंड अ होल टाइम ऑफ 5 to 10 minutes. थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग पेशेंटली. आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
5: हाय, मेरा नाम है.
3: आपकी आवाज कट रही है. हेलो हेलो. Oh, I'm so sorry. I'm not able to hear you. It's a really bad connection. Hello?
5: Hello, mera naam Sanvi hai.
3: Hello, Sanvi. Kaun si language ka gana sunna hai aapne?
5: Hindi, please.
3: Oh, I'm so sorry, sweetheart. Is waqt hum Hindi, Urdu aur English ke gaane nahi play kar rahe. We're playing the South Asian regional language songs. Ab jaise Punjabi, Telugu, Tamil, Saraiki, Pashto, Gujarati, Bhojpuri, anything.
5: Can you play Punjabi?
3: Absolutely. Kaun sa gana pasand hai aapko, Sanvi?
5: White, Brown, Black.
3: Oh, I love that song. That is such a cool song. I'll be happy to play it for you. And Sanvi, where are you calling us from?
5: Dallas, Texas.
3: All right. Thank you for your call and thank you for holding. Here's your song.
6: Yo, yo, yo, yo. Got an Ojla. Abby. Y'all know, baby.

0: was Dane Pedana, Sindhi Gana, Shazia Khush ki Awaaz mein. Sun rahe the aap farmaish thi Malik sahab ki all the way from Chicago. Boli Pyar ki segments mein tamam sunne walon ko khush aamdeed kehti hoon. Ye hamare is station ka wahid wo segment hai jisme hum aapko Hindi, Urdu, English ke gaane nahi sunate balki regional languages ke gaane sunwate hain all by request. 972-235-5555 hai hamari studio ka number. Wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat. Aaiye chalte hain next caller ki taraf. Panisha Radio, aap on air hai. आपका नाम
1: परवीन मोरानी
0: जी. हेलो परवीन जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ.
0: ऑल राइट, सो फार वी प्लेड गुजराती गाना. ओके, वी प्लेड वन गुजराती सॉन्ग सो फार. आप बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है.
1: वही पंछीड़ू नवू पिंजड़ू मांगे
0: पंछी पंछीनो. ओके मुकेश, हाँ कई दफा हमने प्ले किया है आपके लिए ये गाना. आई रिमेम्बर दैट. ओके फॉर श्योर हम आपके लिए प्ले करेंगे. ऑफ कोर्स,
1: योर मेमोरी इज वेरी शार्प.
0: थैंक यू सो मच.
1: मैं शायद नहीं पहचानेंगे.
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, मुझे याद है. इट्स एन ओल्ड ओल्ड सॉन्ग. आई विल प्ले दैट फॉर यू.
1: थैंक यू
0: थैंक यू. टेक केयर,
1: बाय.

0: परवीन जी की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये गुजराती सॉन्ग. गाइस आई वांट टू रीकैप, आपको बता दूं कौन सी लैंग्वेजेस के दो दो गाने हो चुके हैं. वी प्लेड टू मराठी सॉन्ग्स, टू सिंधी सॉन्ग्स, टू पंजाबी सॉन्ग्स एज वेल एज टू गुजराती सॉन्ग्स. सो अब इन लैंग्वेजेस के हम और गाने नहीं प्ले कर पाएंगे. माई अपॉलोजीज. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम. हेलो.
1: हाय
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम.
1: हाय, माय नेम इज बिस्वा एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एन ओडिया सॉन्ग.
0: ऑलराइट, क्या नाम है आपके सॉन्ग का.
1: इट्स रंगवती कोक स्टूडियो.
0: ओह रंगवती, ऑलराइट, कोक स्टूडियो वर्जन. ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें.
1: ऑल कॉलोनी.
0: Alright, thank you so much for your call. Alright, ladies and gentlemen, time for an Odia song. Here you go. Let's enjoy.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं।
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
2: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
15: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
14: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
18: Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnat. I'll be with you till 6 p.m. It is 34 minutes past 4 on this 4th of July. It's a 4th of July weekend. I hope you guys are celebrating with your friends and family. इस वक्त आपके लिए regional languages का segment पेश किया जा रहा है बोली प्यार की, जिसमें हम play कर रहे हैं different languages के गाने. I just want to quickly recap कि कौन कौन सी languages के गाने हो चुके हैं. Telugu, Marathi, Sindhi, Punjabi, Tamil, Gujarati as well as Bangla. अब Gujarati, Punjabi, Sindhi और Marathi के दो दो गाने हो गए, यानी कि इन languages के गानों की request हम और नहीं लेंगे. But any other साउथ एशियन रीजनल लैंग्वेज आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं 972-235-5555. याद रखिए, इस सेगमेंट में उर्दू, हिंदी या इंग्लिश के गाने हम प्ले नहीं करते. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
19: हेलो, बीजू.
18: अब बीजू बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
19: मलयालम,
6: मलयालम कर सकते हैं.
18: Absolutely. And what's the name of your song, Biju?
6: Alli Ambal Kadavil.
18: Alli, can you spell it for me?
6: Alli, Alli Ambal, A-L-L-I.
18: Okay.
6: Y-I-M-B-A-L, Alli Ambal.
18: Alli, okay. And what was the second word?
6: Kadavil. K-A-D-A-V-A-L. Alliyambal Kadavil.
18: Okay, let's see. Purana Gaan, is it an old song?
6: Yeah, it's very old song.
18: Okay, theek hai. Got it? I think I found it, Biju. Here it is. Aayye, ladies and gentlemen, sunte hain ab hum ek purana Malayalam song.

0: सुन रहे थे हम ये फारसी गाना सैयद साहब की फरमाइश पर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: हेलो.
0: हेलो जी, आप ऑन एयर हैं. क्या नाम बताए?
1: एरन.
0: एरन, ऑलराइट, बोलिए. कौन सी लैंग्वेज का गाना?
1: फ्रॉम तमिल सॉन्ग चिन्ना चिन्ना आसी.
0: तमिल सॉन्ग, एंड व्हाट्स द नेम? व्हाट डिड यू से द सॉन्ग नेम इज?
1: Chinna chinna aase.
0: Oh, okay. It's the one, the Dil Hai Chota Sa Tamil version?
1: Yeah.
0: Okay, got it. I will play that for you. Thank you, Aaron, for your call. Here is our second Tamil song for today. That means ki ab aur Tamil gaano ki request hum nahi lenge.

0: This was the Tamil version, the original Tamil version, जिसके ऊपर हिंदी version भी बना था. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. एंड इट्स सो ऑसम कि बोली प्यार की सेगमेंट्स में हमें ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो हमने हिंदी में सुने हैं, देन वी एक्चुअली हेयर द ओरिजिनल वर्जन थ्रू योर रिक्वेस्ट. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. आई ओनली हैव टाइम फॉर टू लास्ट सॉन्ग्स. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: मेरा नाम सुनीता है.
0: जी सुनीता, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: राजस्थानी गाना.
0: राजस्थानी, ऑल राइट. बताइए क्या नाम है आपके गाने का?
1: बोली प्यारी लागे.
0: बोली प्यारी लागे,
1: प्यारी लागे.
0: ओके, ठीक है. और आप सुनीता जी कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें?
1: मलीसा.
0: ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका राजस्थानी सॉन्ग. एंजॉय.

बोली प्यारी लागे राजस्थानी गाना सुन रहे थे हम एंड टाइम फॉर अस टू रैप अप दिस सेगमेंट विद द लास्ट रिक्वेस्ट. लेट्स सी हुज़ आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो हेलो फनीशा रेडियो. ऑल राइट ओके. इट सीम्स लाइक हमारी कॉल ड्रॉप हो गई. सो वी गोना गो अहेड and play this last song that I have found. Actually, hamari ek caller thi, Shobha ji, jinhone call ki thi, right? At the very beginning, she called and requested a Sindhi or Sri Lankan song. Tab se mujhe laga ki ye ek Sri Lankan gana hai. I don't know what language it is, but it's not Sindhi. It's not Tamil. It's I guess, native to Sri Lanka. So I'm going to go ahead and play that song as our last song. सुनिए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू बोली प्यार की.

मेरा इश्क सूफियाना सुन रहे थे आप इमरान हाशमी और विद्या बालन पर पिक्चराइज किया गया ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM. इट इज 9 minutes past 5 ऑन दिस 4th of July. हैप्पी 4th of July इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय तारा कमर्शियल एनर्जी. Business owners ke liye ek special pegam. If you're looking for a smarter commercial energy solution, you can trust Tara Commercial Energy, proudly serving Texas businesses since 2002. With competitive rates, reliable service and customized energy plans. Aaj hi call kijiye 844-428-2808 or visit taraenergy.com. The weather is really hot, इसीलिए कुछ ठंडे मीठे गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. 95 degrees Fahrenheit here in the McKinney area.

0: ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।
1: Get ready।

0: is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

फिर ले आया दिल, इसीलिए 104.9 FM की फ्रीक्वेंसी पर आपको सुनवा रहे हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाना. इट इज 38 मिनट्स पास्ट 5 एंड टाइम फॉर अनदर गिव अवे. जी हाँ, फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट आई विल बी सिलेक्टिंग टू विनर्स. आज का लकी नंबर है जुलाई 4th के हिसाब से 4 and 7, यानी कि सातवां महीना है तो 7, एंड चूंकि 4 तारीख है इसलिए 4. सो अब आप अपने लकी नंबर चेक कर लीजिए, बट मेक श्योर दैट यू हैव नॉट बीन अ विनर ऑफ सैन इडली रेस्टोरेंट गिव अवे बिफोर. सो इफ यू हैव नेवर वॉन एनीथिंग फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट, प्लीज डू कॉल अस. ट्राई टू बी कॉलर नंबर 4 या 7, एंड लाइक आई सेड यू कैन ऑलवेज continue calling multiple times. Speaking of San Idli restaurant, it is a vegetarian restaurant that offers 100% pure vegetarian food. And that's, of course, desi food, jaise ke dosa, idli, South Indian favorites, aur saath mein shahar ki best filter coffee. So if you're caller number 4 or caller number 7, you get to choose dosa of your choice, yani ki aapko milega dosa and you get one filter coffee. So dosa of your choice and one filter coffee milegi caller number 4 or caller number 7 ko. Studio ka number 972-235-5555. This giveaway is from San Idli Vegetarian Restaurant, which is located at the corner of 121 and Custer. All right, so let's go ahead and we can enjoy a song while I take your calls. 972-235-5555.

Ladies and gentlemen, this is your host RJ Somil. Thank you, Amreen, for doing that wonderful show. And happy July 4th to the listeners of Fanacia far and wide. Happy July 4th, 250 years of celebrating an experiment called Democracy and Republic. And here we are, 250 years later. Well, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जिले जरा, क्योंकि यार रोज़मर्रा की जिंदगी में धुएं धोखे धक्के तो मिलते हैं आपको और हमको, और इसी में आपकी और हमारी जिंदगी कट भी जाती है. पर अगर आपको काटनी नहीं है जिंदगी, अगर आपको जीनी है जिंदगी, तो सही स्टेशन पे सही टाइम पे ट्यून हुए हो. इसीलिए हमने शो का नाम रखा है जीले जरा, तो क्यों ना आप और हम इस खूबसूरत सी जिंदगी से दो पल चुरा ले, क्यों ना आप और हम इस शाम को और रंगीन बना दें.

पास आज रिजर्वल पास तो नहीं बट जी हाँ वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा क्योंकि वी हैव द पार्टी बीट्स ऑन. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू जी रिजर्वल. दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल और यू गेट ऑल द क्लास नॉन द बकवास ऑन प्राइम टाइम सैटरडे नाइट फ्रॉम 6 to 9. वेल शुरू करते हैं सैटरडे नाइट राइट. अब मैं खुद के मुंह से क्या बताऊं यार, सैटरडे नाइट है पार्टी के लिए तो मैं जगह भी नहीं ढूंढता, मैं आपकी तो क्या अपने आप की भी नहीं सुनता.

जी हाँ, सैटरडे नाइट मैं आपकी तो क्या आपने आपकी भी नहीं सुनता. आफ्टर दैट ब्यूटिफुल ट्रम्पेट प्ले देर इज ओनली वन सॉन्ग दैट कैन फॉलो दैट बीट. हियर कम्स द वर्ल्ड ऑफ, वेल लाइक टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ रईस दिस टाइम.

जी हाँ, ऐसी तो लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना गिरा वल्ला. लेट मी रिमाइंड यू दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस, एंड दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज. एंड द टाइम फॉर टैक्स प्लानिंग इज नॉट डिसम्बर और अप्रैल, द टाइम फॉर टैक्स प्लानिंग इज मिड ईयर, सो दैट यू कैन put the strategies in place. So do contact AG FinTechs. They do untapped, they do financial services for both individuals as well as businesses. Yeah, they are trusted, efficient, and get you ready for the future. You can visit their website, which is agfintechs.com, or you can call their office at 469-942-9888. 469-942-9888.

My goodness, what a fresh story this was of Dawn in 1970s when it was released, 80s when it was released, and with Amitabh Bachchan, Zinat Aman and Helen. And then, of course, the second kiss of Dawn was brought with Shah Rukh Khan in the playing the lead. The third kiss got into controversies after Dhurandhar and stuff, but dekhte hain Dawn ki teesri kiss jo aayegi usme pata nahi kaun hoge. But chaliye leke chalta hu aapko agle gaane ki aur usse pehle batata hu agar आपके साथ कोई दुर्घटना घटी, आपकी नज़र रास्ते से हटी और कोई दुर्घटना घटी आपके साथ, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन कार और ट्रक एक्सीडेंट, या फिर आपके साथ हुआ हो कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट वर्क प्लेस पर या फिर बिजनेस पे कहीं पे,

जी हाँ, दैट वाज माँ के बाद ग्रुप इज कॉल्ड जेन एंड आई लव द बीट ऑफ दैट सॉन्ग. आई लव लाइक आई सेड, आई मीन इट इज इंग्लिश प्लस इट्स गॉट अ साउथ अफ्रीकन बीट टू इट एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद दैट सॉन्ग द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट एंड हैवंट गॉटन दिस आउट ऑफ माय प्लेलिस्ट एंड आई रिजॉर्ट टू दिस सॉन्ग एवरी टाइम आई एम ऑन अ रोड ट्रिप और समथिंग. इट जस्ट गेट्स मी गोइंग. सो चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले उई करते हुए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर और सुनाता हूँ मैं आपको. इनफैक्ट सैटरडे नाइट है यार, जुलाई 4th 250 years of celebrating America. क्या कर रहे हो आप बताइए मुझे. आपके पास अगर कोई अच्छा सा गाना हो, बस शर्त इतनी है कि सॉन्ग में होनी चाहिए बीट जो मूव करे हम सबके फीट. As long as that's that, when we come back from the break, I'll open up the lines and we'll start taking your request and बताइए मुझे what's the best part of your American experience and I'll share some of mine and आप अपने बताइए. हम शेयर करेंगे आपके साथ ऑन एयर और करेंगे आपकी शाम और थोड़ी रंगीन. चलिए लेके चलता हूँ इस गाने की और सैटरडे नाइट डांस तो करना ही पड़ेगा. और कब तक डांस करेंगे हम? वेल, मैं नाचू जब तलक

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है, या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
7: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain-friendly options.
2: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
8: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or 5 rings. Dine in only.
10: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.
11: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: बेटा, 95% आए?
14: हाँ मम्मी।
13: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
13: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
16: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।
17: वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल। और पहुंच गए हम सेकंड सेगमेंट, आगाज करते हैं सेकंड सेगमेंट ऑफ चीरे जरा ऑन दिस ब्यूटीफुल 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेशंस। आई एम ब्रिंगिंग बैक अ क्लासिक, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पुरानी दाल पे नया तड़का। यू हैड नेवर हर्ड डोला रे डोला। ऑफ कोर्स लाइक आई वाज टेलिंग यू बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक, यार मैं नाचूं जब तलक तू बोले तब तलक। नाचना, नाचने में थोड़ा झूमना भी होता है, थोड़ा डोलना भी होता है। तो लेट्स ब्रिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ डोला रे डोला।

जी हाँ, वो भीगी भीगी रातें, वो भीगी भीगी रातों का हमें भी इंतजार है। इनफैक्ट आई वाज जस्ट लुकिंग अप द वेदर इन इंडिया एंड बॉम्बे में तो क्या बारिश गिर रही है, माय गुडनेस। उसका वेदर देख के हमको मजा आ रहा है, यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है क्या बताऊँ मैं आपको। एंड फॉर पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग जुलाई 4th, मेक श्योर यू हाइड्रेट, मेक श्योर यू हैव सनस्क्रीन, मेक श्योर यू हैव द शेड एंड मेक श्योर यू हैव प्लेंटी ऑफ हाइड्रेशन विथ यू, फॉर नॉट जस्ट फॉर यू बट ऑल्सो टेक अ स्पेयर वन फॉर पीपल अराउंड यू, बिकॉज द हीट इज अनप्रेसिडेंटेड। आई वॉज कमिंग हियर एंड आई हैड द मीटर रीडिंग, द टेम्परेचर रीडिंग एट अबाउट 100 degrees when I was driving up here to the studio. चलिए कोई नहीं, मैं लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की। और उससे पहले बताता हूँ आपको, अगर आपने घर लेने की सोच ली है या फिर सोच रहे हो आपको घर लेना है, मार्केट इज राइट टाइम नॉट राइट टाइम, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं, वेल यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम होम मॉर्गेज इज हियर विच कम्स टू योर रेस्क्यू विद ऑल द एक्सपर्टीज दैट दे हैव सिंस 1998. जी हाँ, दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्म होम ओनरशिप ड्रीम्स इन टू रियालिटी. They offer personalized mortgage solution based on your unique situation, whether you are a W-2, 1099, gig economy, worker, single income, double income, all those things. They have tailored mortgage solutions. And the best part is this, whether you're moving from out of state or going out of state, they are licensed in all 50 states and their experienced team is committed to finding the right loan options tailored for your needs. So you can start your home ownership journey with confidence today when you contact Dream Home Mortgage at the number that I'm going to give you. Unka number hai 972-245-5626, 972-245-5626 hai inka number. Inki website aapko milegi dreamhomemortgage.com pe for more details. Dream Home Mortgage, making your dream homes happen. Chaliye, lekh chata humko agle gaane ki aur

जी हाँ, दैट वाज द ओरिजिनल ट्रैक, द रिदम इज गोना गेट यू बाय ग्लोरिया स्टेफान, जिसमें से लगाया था हमने हिंदी का गाना ओए ओए। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और लेके चलता हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ हिटमैन।

0: Roman Puchna. Roman Puchna.
1: दोबारा बिल्कुल मत पूछना. दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल एंड यू ट्यून टू जी लजरा ऑन फनेशिया 104.9 एफएम वेरी गेट ऑल ऑफ द क्लास द बकवास. जी हाँ, द ओरिजिनल तमा तमा लोगे. आई रिमेंबर देयर वाज वन लाइन व्हिच वाज झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए.

जी हाँ, द पॉपुलरी वर्जन ऑफ जुम्मा चुम्मा दे दे दिस वॉज तमा तमा लोग रीमेड, पुरानी ताल पर नया तड़का लेके आए थे इन द मूवी धुरेंदर, एंड देन दे हैव मिक्स्ड इट टू टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। आई लव द बीट, आई लव द सॉन्ग। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आ रहा होगा। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। यू ट्यून इन टू जिले जरा विद आजे सोमिल, ओनली ऑन फनेशिया, एवरी सैटरडे नाइट प्राइम टाइम फ्रॉम 6 to 9। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और लेके चलता हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ, जी हाँ है जवानी तो इश्क होना ही है। दिस विल टेक अस टू द ब्रेक एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, एंड आई विल गेट यू रेडी फॉर द पार्टीज दैट यू आर हेडिंग आउट टू।

0: जी हाँ, है जवानी तो इश्क होना ही था। जी हाँ, जवानी में इश्क होता है। वेल, व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन। डू यू बिलीव इन लव एंड लाइफ आफ्टर लव? टेकिंग यू टू द क्विंटेसेंशियल अमेरिकन स्पिरिट वंस वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
5: तो पहनती क्यों नहीं हो?
4: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
5: तो रोज वाला ले लो।
6: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
7: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.